फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: I love FM 101. 101.
1: Right, welcome back once again. 9:12 हो चुके हैं. आप सुन रहे हैं 101, मुझे कहते हैं साहिल और प्रोग्राम है जी आप सबका. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेल, क्या ख्याल है आपकी कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करें. 111-111 इज द नंबर. इसके अलावा जनाब पोस्ट जो है वो भेज चुका हूं मैं, अगर लग जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी. लेकिन पोस्ट जा चुकी है और देखने वालों ने देखी कि नहीं, देखने वालों ने देख भी ली है. तो इसका मतलब है कि फेसबुक पर जो है वो पोस्ट ऑलमोस्ट होगी तकरीबन. मैं देख लेता हूँ जी, पोस्ट लग चुकी है और बहुत सारे लोगों ने लाइक भी कर लिया. भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है. कुछ मैसेजेस हम वहां पे प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं. हमें ज्वाइन किया है किसने, कहां से और क्या कहते हैं. आज ना थोड़ा सा गला खराब है और बस गुजारा करिएगा. मानो खान ने ज्वाइन किया है और कहती है हैव अ ब्लेस्ड मॉर्निंग अहेड. थैंक यू सो मच मानो, कहती है सलाम अलैकुम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मानो. नेक्स्ट वी हैव सुहेल राणा और सुहेल क्या कहते हैं. सुहेल कहते हैं जी सलाम भाई, शो की तो स्टार्ट तो आला है, आपकी सॉन्ग्स कलेक्शन सिलेक्शन कमाल होते हैं. हम ऑफिस सफर वालों के लिए फ्रॉम लाहौर. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया राणा जी. को गलती हो जाए तो राणा जी मुझको माफ करना. नेक्स्ट वी है वन एंड ओनली राहत बानो मौजम और कहती है डियरेस्ट सुहेल यूसुफ गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक. रिबेका अब्दुल आज शो करेंगी या नहीं, आई हैव नो आइडिया. मेरे ख्याल से शायद वो शो के लिए शायद नहीं आएंगी, क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि जिस तरह रोड्स वगैरह ब्लॉक वगैरह वाला सिस्टम होता है ना, तो हम फीमेल एम्प्लॉइज को जो है वो थोड़ा सा मना कर देते हैं इधर आने के लिए कि भाई थोड़ा सा आप इजी हो जाएं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव अदनान फातिमा कहती है गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अदन फातिमा कहती है गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अदन. नेक्स्ट वी हुमैरा फयाज कहती है सलाम अलैकुम भाई, कैसे हैं आप, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा अदन अगैन कहती है अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम अदन, जीती रहिए. और दोबारा से रिफ्रेश कर लूं मैं जी, आपके पैगाम प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और आपने क्या करना है, आप लोगों ने जो है वो अच्छे अच्छे पैगाम इसी तरीके से भेजते रहना है ताकि मैंने प्रोग्राम में शामिल करता रहूं. इसके अलावा कॉल्स का सिलसिला भी हम रखेंगे प्रोग्राम में. और लेट मी चेक कि हमारे से टेलीफोन लाइन पे कौन लोग मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं. और हियर वी गो जी. एक्चुअली कुछ नंबर्स देख के उठाने हमने. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. अरे क्या हाल है.
2: ठीक ठाक शुक्र.
1: मैं ठीक ठाक फर्स्ट क्लास. राहत कैसी हैं आप, क्या कैसे गुजारी जिंदगी.
2: अल्लाह का
1: शुक्र. खामोश क्यों है, परेशान क्यों है.
2: मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं.
1: ओहो ओहो, क्या हो गया उसे.
2: गला खराब
1: ना सबका आजकल चल रहा है. रुहान दो दिन से खांस रहा है, गला खराब है. और आपकी भाभी को भी अब थोड़ा इशू हुआ मुझे लग रहा है. और रात से मुझे भी गले का थोड़ा सा इशू बना हुआ है. ये वायरल है, सबको हो रहा है एक दूसरे से. ऐसे ही है, बच्चे भी नहीं जा रहे थे, आज ही भेजा उनको. सुनाए आमीन, सुनाए कैसी गुजरी जिंदगी.
2: अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक.
1: क्या कहना चाहेंगी.
2: कुछ नहीं, प्रोग्राम आपका अच्छा, आप मेरी फरमाइश पूरी करते हैं, ऐसा भी कीजिएगा.
1: अच्छा
2: ठीक है.
1: कौन सी है. छठो. चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. हाँ आना और आने वाले आ जाते हैं. हाँ वो देखे ना आपको सामने, ये फैसलाबाद तक चली जाती है वो वीकेंड पे.
2: हाँ हमारी दफा कोई नहीं आती.
1: हमारी दफा कोई नहीं आती. नहीं आती तो अब क्या ही कर ले. हाँ सही बात है. हाँ मुख्तारिया हूँ, गल वध गई है. हेल्प मी दुर्दाना, हूँ वध गई गल. ओके अल्लाह हाफिज. वहाँ से मौजूद थी हमारी बहुत ही प्यारी कॉलर राहत बानो मौसम. एक और कॉल. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम साहब जी, क्या हाल है. ठीक है.
1: ठीक ठाक हैं जी. कौन बात कर रहे हैं
3: जी. फारूक बात कर रहा हूँ, पिंडी रोड चकबेली खान रोहत इस्लामाबाद.
1: अरे वाह जी वाह, क्या हाल है फारूक साहब, कैसे हैं आप. ठीक है
3: अल्हम्दुलिल्लाह जी. जुमा मुबारक।
1: आपको भी बहुत बहुत मुबारक। रहा साहब सॉरी फारूक साहब, मुझे ये बताइएगा, नाश्ता कर लिया आपने?
3: जी सर जी, आज बस 3 प्याले चाय के पिए हैं। आप कपों में नहीं पीते, हम प्याले होते हैं ना हमारे गाँव वाले, वो बड़े बड़े प्याले होते हैं, वो प्याले पीते हैं।
1: अरे अल्लाह के बंदे, 3 प्याले पी लिए। सही, आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है।
3: अभी आवाज ठीक है?
1: हाँ जी, अब ठीक है जी। फारूक साहब,
3: केक ले लेता हूँ या कोई बिस्किट वगैरह ले लेता हूँ, जी नहीं चाहता है। सर्दियों में 2-2, 3-3 पराठे खा जाते हैं।
1: अरे वाह जी वाह, लेकिन कोशिश यही हो कि आप कुछ ना कुछ जरूर खाएं। जैसे आप केक बिस्किट ले लेते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन खाएं जरूर कुछ ना कुछ सुबह।
3: हम अपने बात कर रहे थे, खुशबू आप एक नाम है, रॉयल मैरिज ली है कभी पहले?
1: सर बहुत बहुत दफा लगाया है, लेकिन हम नाम तो ना ले सर, फंसवाएंगे आप, हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं।
3: रॉयल मैरिज है, एक शादी है, एक लाफिकब है, एक इंटरनेट।
1: अरे अरे अरे अरे अरे, चलें, आई एम सॉरी, मुझे कॉल ड्रॉप करनी पड़ी। फारूक साहब, एक्चुअली क्या है कि इस तरीके से स्पॉन्सर्ड चीज़ों के नाम ऑन एयर नहीं लेते, यू नो, हम यहाँ पे कोई ऐड चलाते हैं या किसी का नाम लेते हैं, उनसे यहाँ पे लाखों रुपया लिया जाता है। तो उस तरीके से अगर आप नाम ले लेंगे तो वो तो फिर हमारी शिकायत हो जाएगी कि ये लोग ऑन एयर बैठ के नाम ले रहे थे। ठीक है, तो थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि नाम हम ना लें। ठीक हो गया जी, ओके जी। सो जी, ये बिल्कुल हो गया, और कॉल्स बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन बीच में कुछ डिफरेंट कॉल भी आ रही हैं जो कि नहीं रिसीव करनी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? एक मिनट ठहरेंगे तभी मैं बोलूं, ये माइक मैंने गलत लगा लिया। जारा शाह, क्या हाल है जारा के?
4: अल्लाह का शुक्र मेरे भाई, आप कैसे?
1: अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। जारा, कैसी गुजरी जिंदगी?
4: अल्लाह का शुक्र। आपने नाश्ता कर लिया भाई?
1: जी मैंने नाश्ता किया आज।
4: मैंने भी 2 दर्जन अंडे, 2 डोंगे सालन के और 2 थर्मास चाय के, वो मैंने अभी सिर्फ हल पिया है, तो नाश्ता भी बाकी है मेरा।
1: है क्या, कोकाफ से कॉल कर रही हो? है कोई मुनासिब गिज़ा नहीं है आपकी, मुझे लग रहा है गैर इंसानी खुराक लग रही है। मैंने तो भाई एक पराठा खाया, उसमें से भी थोड़ा छोड़ के आ गया, मैं लेट हो रहा था। देखिए आप लोग के लिए हम खाना भी पूरा नहीं खाते। ये मोहब्बत टुवर्ड्स आवर चैनल,
4: इस पे तो पता ही क्या भाई, इस पे आपको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए।
1: गोल्ड मेडल नहीं, आप छोड़े, आप बस एक चावल की बोरी भिजवा दीजिएगा।
4: दो बोरी चावल नहीं, 2 बोरी कहे ना, एक क्यों? अच्छा, एक 2 बोरी चीनी और भी 2 बोरी बाजरा, और वो भी भेज दें।
1: नहीं, दो जो भी भेजेंगे, दो दो भेजेगा, क्योंकि वो फिर आपको पता है जो दोस्त है मेरी वो छीन लेगी आधी चीजें मुझसे, तो फिर मेरे पास भी पूरी पूरी बचे ना।
4: हाँ, आधी छीनेंगे, आधी फर्श पे गिरेंगे, आधी वो लेंगे।
1: हाँ ये तो है, बहुत शुक्रिया। मैं कर लूंगा, मैं आपको पता है मुझे तो 1 सेकंड लगता है माइंड करने में। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। मैं मौजूद थी हमारी बहुत ही अच्छी कॉलर जारा। सो हियर वी गो, एक और कॉल की जाने बढ़ेंगे और देखेंगे हमारे साथ कौन मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया, आप सुन रहे हैं FM 101, और बीजी म्यूजिक जो है वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। जी एक और कॉल। हेलो, शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। हेलो, कॉल तो है लेकिन जो भी हैं बस शायद बात नहीं करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। ये कहीं उस दिन वाला चक्कर तो नहीं हो गया फोन पे? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे लग रहा है कुछ मसला चल रहा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है,
1: ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं?
5: शहजाद बात कर रहा हूँ।
1: शहजाद, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟
5: راول پنڈی سے.
1: راول پنڈی سے کیسے ہیں شہزاد، کیا کہنا چاہیں گے؟
5: پروگرام اچھا جا رہا ہے، شروعات اچھی ہوئی ہے.
1: بہت شکریہ، تھینک یو.
6: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू हैं। सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
2: This is FM 101.
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
3: सुनते रहिए FM 101।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
4: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
1: This is FM 101.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
1: This is FM 101.
4: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसे मंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू है।
5: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
6: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
2: This is FM 101.

0: शुक्रिया, आपने ऐसे मनोवन ट्यून किया।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
2: सुनते रहिए FM 101.1।
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
2: सुनते रहिए FM 101 101

दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से ख़बरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस पुख्ता यकीन का इआदा किया है कि तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद पर गुलिस्तान सेक्टर में अफगानिस्तान की जानिब से जारहियत की कोशिश नाकाम बना दी। कौमी अखबारबीनी का दिन आज मनाया जा रहा है। और जापान में 20वीं एशियाई खेलों के हॉकी मुकाबलों में पाकिस्तान अपना 4th मैच कल मलेशिया के खिलाफ खेलेगा।

0: Hi, this is FM 101.
1: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
2: This is FM 101.
5: I love FM 101.
6: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसे मंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू हैं। सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
7: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। There's music and then there's magic. One above FM 101.
8: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं। सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
1: सुनते रहिए FM 101.1।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा किया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत इदारा जाती ढांचे के क़याम की जानिब पेशरफ्त का जायजा लिया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक वादों को अवाम के लिए अमली नतायज में तब्दील होना चाहिए। और ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने सरमायाकारों और कारोबारी अफराद के लिए सहूलतकारी तेज़ करने की गर्ज़ से डिजिटल टिकटिंग हब मुतारिफ कराया है।

0: Hi, this is FM 101.
1: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।

दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत इदारा जाती ढांचे के क़याम की जानिब पेशरफ्त का जायजा लिया है। नायब वज़ीर आज़म और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने न्यूयॉर्क में मुलाकात में इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। जापान में एशियाई खेलों के हॉकी मुकाबलों में पाकिस्तान कल अपना चौथा मैच मलेशिया के साथ खेलेगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कसीर जहती निज़ाम और आलमी अमन तरक्की के फ़रोग में अक़वामे मुत्तहिदा के मरकजी किरदार के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अयादा किया है। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 81वें इजलास के मौके पर अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में कही। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वामे मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और उसूलों से पाकिस्तान की मजबूत वाबस्तगी का भी अयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल समेत अहम इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई कशीदगी के हल में मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर देते हुए खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म को दोहराया। शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी में गैर मामूली इजाफे पर भी तबादला ख्याल किया। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आलमी इदारे में पाकिस्तान के कायदाना किरदार, मजबूत मौक़िफ़ और आलमी अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की खिदमात की तारीफ की और बिलखसूस तनाज़े के पुरमन हल और खित्ते में देर पा अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार और कुर्बानियों को भी सराहा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत इदारा जाती ढांचे के क़याम की जानिब पेशरफ्त का जायजा लिया है। ये पेशरफ्त न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 81वें इजलास के मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान के दरमियान मुलाकात में हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सलामती के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: क्या कह रहे थे तुम? एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा,

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत जवाबित लागू है।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूली। सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर

0: तो पर हमले किए, मगर तरीके इंसाफ दहशतगर्दों की मंजूर नजर है। और ना सिर्फ वो दहशतगर्दों की मजम्मत करने से गुरेज करते हैं, बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ किसी किस्म की जो कार्रवाई है वो करने से भी वो मुकम्मल तौर पे गुरेजा रहते हैं। दहशतगर्दों की सहूलतकारी करना इनकी पॉलिसी का हिस्सा है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये टीटीपी की बी टीम है और टीटीए की ये सी टीम है। तरीके तालिबान पाकिस्तान की मुकम्मल सहूलतकारी तरीके इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट कर रही है, और इसके साथ साथ तरीके तालिबान अफगानिस्तान की भी ये सी टीम है, ये उनकी भी नुमाइंदगी करते हैं। यही वजह है कि वजीर आला सुहेल अफरीदी वजीर आला कम और टीटीपी के कमांडर ज्यादा नजर आते हैं, अपने कॉल में भी अपने फेल में भी। और जब कोहाट पर ड्रोन फायर किए जाते हैं अफगानिस्तान से और पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स उसको बड़ी महारत से गिराते हैं, तो आपको कोई भी मजम्मती बयान या कोई भी ऐसा अमल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से नजर नहीं आएगा कि वो इस मामले पे किसी किस्म का कोई स्टैंड लें या इस पर कोई बात करें या मौके पे जाएं और खड़े हों और कहें कि ये पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला किया गया है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपको कभी नहीं नजर आएंगे ये करते हुए। कुरम के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है एफसी पर, हमारे जवानों पर, ये कतन आपको नजर नहीं आएंगे कि ये कुरम जाएं और कहें कि जी हम कुरम आए हैं, हम अपने जवानों अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और हम किसी सूरत भी इस तरह की फायरिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये बुजदिली की भी अलामत है। सोहेल अफरीदी सीएम केपीके, उसकी काबीना, उनकी पूरी तरीके इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट, ये ना सिर्फ बुजदिल हैं, ये सहूलतकार भी हैं दहशतगर्दों के। जिस तरह मैंने कहा कि टीटीपी की बी टीम और टीटीए की सी टीम, ये नजर आता है। और यही बुजदिली है कि अब ये धरनों से भी भाग गए हैं। आओ ना, हिम्मत है तो आओ, आके धरना दो। इनकी तैयारी भी कोई नहीं है। मैं तो खैबर पख्तूनख्वा से होके आया हूं, किसी किस्म की तैयारी नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इनको चाहिए कि ये वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें। सिर्फ इस साल 2026 में 2456 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और ये अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 10 हमले एक दिन में बनते हैं, 10 अटैक्स पर डे। इसमें 472 हमारे पुलिस, फौज, रेंजर्स, एफसी के जवान अफसरान वो शहीद हुए हैं, 472 इस साल, और 1500 से ऊपर लोग इसमें जख्मी हुए। तो क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई की गवर्नमेंट और उनका वजीर आला, जो टीटीपी का कमांडर ज्यादा लगता है और वजीर आला कम लगता है, वो ये लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करना चाहते, क्योंकि एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस है वहां पे। इलीगल ट्रेड है टिम्बर की, टोबैको की, वहां पर इलीगल माइनिंग है गोल्ड की, मादनियात की। तो ये सारा मिलजुल के होता है कि इनके पॉलिटिकल लोग फ्रंट पे होते हैं, वो इस इलीगल माइनिंग और ठेकों के जरिए टेररिस्ट को फंड करते हैं और उनकी सहूलतकारी करते हैं। ये वजह है कि ये टेररिज्म को नहीं रोकना चाहते वहां पे। और जो सूबाई हुकूमत टेररिज्म को ना रोकना चाहे और लॉ एंड ऑर्डर को ना ठीक करना चाहे और बेगुनाह शहरियों का खून बहे, तो ये किसी भी सूरत किसी भी दुनिया के खित्ते में इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान से ड्रोन आए तो आप भाग गए, कुरम में फायरिंग हुई आप भाग गए, कौन खड़ा हुआ? हमारी जो बहुत बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस अफवाज हैं वो खड़ी हुई, जवान खड़े हुए। मैं अभी हंगू के हमले में जख्मी होने वाले एक शख्स की आदत के लिए गया सीएमएच कोहाट, तो उसने कहा कि हम तो बुजदिल नहीं है, ये होंगे बुजदिल, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और इनकी हुकूमत, हमें ठीक होने दें, हम इन दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला करेंगे। तो ये दहशत गर्दी की सहूलत कारी करना, दहशत गर्दों को प्रमोट करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक दानिस्ता तौर पर ना करना, ये सारी चीजें हमें नजर आ रही है, हमें समझ आ रही है कि दहशत गर्दी के फरोग में इनका पूरा हाथ है और भागना इनका वतीरा है। ये पहले दहशत गर्दों से हाथ मिलाते हैं और दहशत गर्दों को उनकी मुकम्मल सहूलत कारी करते हैं और उसके बाद ये अपने आप को पॉलिटिकल लोग कहते हैं, क्या आपको यह हक है कि आप अपने आप को कह सकें कि आप सियासी लोग हैं? तो ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना ये सूबे की जिम्मेदारी है और इनको चाहिए कि ये वहां पे पुलिस रिफॉर्म्स लेके आए, बजाय इसके कि ये पुलिस रिफॉर्म्स लेके आते, इन्होंने एक उल्टा कानून वहां पे बना दिया और वो कानून जो बनाया है जिसकी तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं उसमें ये पुलिस को पॉलिटिकल फोर्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जिस तरह इनकी हुकूमत ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी की है पुलिस भी सहूलतकारी करे। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता। हमारे शहरी, हमारे जवान, हमारे अफसर, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वो पूरी तरह मुतहरक हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा होगा और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से दहशतगर्दों का मुकाबला किया जा रहा है पूरी कौम कुर्बानी दे रही है इसमें, एक दिन आएगा कि दहशतगर्द मुकम्मल तौर पे वो पसपा होंगे और यहां से उनका मुकम्मल खात्मा पाकिस्तान से होगा इंशाल्लाह ताला। मगर ये सूबाई हुकूमत ये इस काम से बाज रहे जो ये कर रही है दहशतगर्दों की सहूलतकारी हर फॉर्म में, फाइनेंशियली, मॉरली, और आज तक आपने नहीं सुना होगा कि इन्होंने दहशतगर्दों की मजम्मत की हो। तो ये इनको चाहिए होश के नाखून लें और इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात अताउल्लाह तारर इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में आवाम बे यारो मददगार है, सुहेल आफरीदी और उनके साथी दहशत गर्दों के साथ हाथ मिलाए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल सब के सामने है। वज़ीर इत्तला'आत ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए इकदाम करने से सूबाई हुकूमत गुरेजा हैं। सुहेल आफरीदी और उनके

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा।

0: का जो है वो डिस्कॉर्ड था, डिस्कनेक्ट था, कोई कह रहा था करना है, कोई कह रहा था अपने अपने इलाकों में करना है, मतलब
1: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक वन अबाउट FM 101.

0: न्यूयॉर्क में बिजनेस काउंसिल फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के वक्त से मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म
1: There's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: जो इस्लामाबाद जो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग है वो हमें पूरी तरह आज भी काबिल कबूल है।
1: वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि

0: रात के 10 बजे अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए, अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म आज अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास से खिताब करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और अलजज़ायर के वज़ीर ख़ारजा ने न्यूयॉर्क में मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर इत्तला'आत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर जोर दिया है कि दहशत गर्दों को सहूलत फराहम करने से गुरेज करे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पीर से अब तक बलोचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता 33 ख्वारिज दहशत गर्दों को हलाक किया है। और अब खबरें तफसील के साथ।
1: There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways.

सो जनाब, दिल वालों की बज़्म सज चुकी है और दिल वालों की बज़्म में आप हमारे साथ होते ही हैं हमेशा की तरह। दिल वालों की बज़्म जो है ये महज एक महफिल नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी दुनिया जहां जज्बात की कदर होती है, जहां मोहब्बत अपनी पूरी शिद्दत के साथ सांस लेती है, जहां अल्फाज दिलों की ज़ुबान बोलते हैं और ये वो जगह है जहां एहसासात ज़ख्मों पे मरहम बनते हैं, जहां हिजर की तड़प को समझा जाता है और वसल की खुशबू महकती है। ये बज़्म उन लोगों के लिए है जो दिल की सच्चाई पे यकीन रखते हैं, जो धड़कनों की ज़ुबान समझते हैं और जो वफा को सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक इबादत समझते हैं। यहाँ ना झूठ की गुंजाइश होती है ना धोखे का गुज़र, यहाँ आँखों में सच बोलने का हुनर होता है और लबों पे वो बातें जो सीधा दिल में उतर जाती हैं। सो वेलकम टू द दिल वालों की बज़्म FM 101 इंटरनेशनल से मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। लाहौर स्टूडियो से आपका हमारा साथ होता है जुमे के रोज़ आपका हमारा साथ अब से लेके ठीक 12 बजे तक होगा। 25 सितंबर सन 2026 की ये खूबसूरत सी रात जिसमें आप पाकिस्तान भर से हमारे साथ शामिल होते हैं टेलीफोन लाइन के थ्रू, अपने पैगामात के थ्रू और अपने एहसास से भी हमारे साथ रहते हैं।

सो जनाब 04-111-000-101 पे आप लोगों की कॉल्स को हम शामिल करेंगे। लाहौर का जो मौसम है थोड़ा सा उसमें तब्दीली आ रही है ना। जैदी साहब ने गर्दन हिला के कह दी बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे। मज़ा बड़ा आता है इस चीज़ का जब आपके सामने माइक्रोफोन होता है, आप बोल रहे होते हैं और साथ बैठा शख्स जो है ना गर्दन हिला देता, हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं। इसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मतलब आप कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह जाते हैं, इशारों में आप बहुत कुछ कह जाते हैं। नॉर्मली ये होता है ना, हमारे जो बड़े होते हैं, घर के जो बड़े होते हैं, जब घर में मेहमान आते हैं और ऐसी सूरत में जब बच्चे कुछ मिसबिहेव कर रहे होते हैं ना, तो बड़ी आंखें दिखा रहे होते हैं, गुस्से से उनकी तरफ देख रहे होते हैं, या कोई ऐसी बात कह जाते हैं जो उनको नागवार गुजरती है, ऐसे मौके पे भी जो पेरेंट्स होते हैं ना वो ज़रा बड़े गुस्से से उनकी तरफ देखते हैं, और फिर वो बच्चे समझ जाते हैं कि यार काम जो है ना वो ख़राब हो गया, अब हमें थोड़ा सा ना संभलना होगा। तो ये जो कम्युनिकेशन एक एज में बड़ा मज़ा आता है इसका, जब आप बच्चों को डराते हैं और मतलब आँखों ही आँखों से, वो जिसे कहते हैं ना कि देखो खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की आंख से, तो वो शेर की जो आंख होती है ना वो वालिद साहब की खास तौर पे घरों में होती है। और अब तो मैंने देखा है यार थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, अब मुझे लगता है कि जो वालदा है ना उनकी वो शेर वाली आंख होती है। पहले वक्तों में जो वालिद साहब थे ना उनकी वो शेर वाली आँख होती थी, वालिद साहब ने एक बड़क लगाई, बहुत शुक्रिया जैदी साहब आप का जो मोबाइल है ना वो हमेशा ऑन रह जाता है। अच्छा जनाब, वो जो आँख है ना, वो जो वालिद साहब की आँख हुआ करती थी, वो जनाब एक दफ़ा जब घर में घुस गए ना, फिर वो घर के अंदर कर्फ्यू नाफिज हो जाता था, घर का जो माहौल है ना वो मुकम्मल तौर पे जनाब सन्नाटा छा जाता था। अच्छा फिर वो ये होना कि जी जो वालदा है ना उनके पास बच्चों की एक शिकायत की एक लंबी फहरिस्त होनी कि किस बच्चे ने क्या बिहेव किया, किस बच्चे ने कैसे किया, तो इस तरह ना बड़ा मज़ा आता था। वो पुराने वक्तों की बात कर रहा हूँ, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वालदा का रोब ज़्यादा है और वालिद साहब जो है ना वो इज़ लाइक ए फ्रेंड, वो बड़े एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में और दोस्त बन के मतलब लड़ाई भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं बच्चों के साथ। दैट इज़ वेरी गुड, आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड जैसर, कि बच्चों के साथ आप फ्रेंडली रहें, उनके साथ दोस्त बन के रहें, उनको आप इंजॉय करें और उनकी एक एक मोमेंट को आप इंजॉय करें, उनके एक एक लम्हात को इंजॉय करें। और आई थिंक ये अल्लाह की ब्लेसिंग होती हैं कि आपके जो बच्चे होते हैं ना उनका कुछ दौर होता है, वक्त होता है, और आप उस वक्त को इंजॉय कर रहे होते हैं, उनके हंसने को, उनके खेलने को, उनके उठने को, उनके जागने को, उनकी बचपन को, उनकी बचपन की मासूमाना शरारतों को, उनकी गुफ्तगू को। तो अब आई थिंक ट्रेंड इज़ चेंज, अब पेरेंट्स जो है ना वो थोड़े से वैसे सख्त नहीं हैं जैसे पहले वक्तों में हुआ करते थे, अब्बा जी आ गए जनाब बस सारा काम। आई थिंक बहुत से लोग इस बात को रिलेट करेंगे, जो 90s के बच्चे हैं ना वो तो लाजमी इस बात को समझेंगे, या 80s के या 70s के वालिद साहब का कितना रोब और दबदबा होता था, और वालदा जो होती है ना वो सारा दिन इंतज़ार करती रहती थी कि कब घर आएँ, और फिर तेरा अब्बा आएगा ना तुम दसाएंगे। सो जनाब आज का जो हमारा मौजू है ना, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू दिस थिंग। आई थिंक मुझे थोड़ा सा इस तरह है कि हमने ना आई थिंक वेरी अनफॉर्चुनेट कह लें, अनफॉर्चुनेट कह लें, मैं इसको क्या कहूँ, हमने बच्चों को कामयाब होना तो हम सिखा देते हैं, हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि पढ़ो, हम उन्हें बताते हैं कि अच्छे नंबर हासिल करो, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, अच्छी डिग्री हासिल करो, अच्छी नौकरी हासिल करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ और अपना घर बनाओ, अपना मुस्तकबिल जो है ना वो महफूज कर लो। ये वो पेरेंट्स के ख्वाहिशात होती हैं, या बच्चों के लिए वो एक उनके मैसेजेस होते हैं, या उनको बार बार तंबीह किया जाता है, बार बार उनको बताया जाता है कि जी अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज, अच्छा प्रोफेशन और ज़्यादा सिक्योर जॉब, अच्छा सब कुछ ये बताया जाता है। और हम उन्हें ये भी सिखाते हैं कि दुनिया में आपने कामयाब कैसे होना है, क्या फिर
یہ کہتے ہیں ہم ان کے مستقبل بنانے میں ان کی بڑی فیور بھی کرتے ہیں، بڑی مدد کرتے ہیں، بڑا ان کو ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں ایفرٹ کا. پیرنٹس ظاہری بات ہے کرنا تو ہے ڈیفینیٹلی، بچے کے مستقبل کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے، اس کی اچھی لائف کے لیے پیرنٹس کی ذمہ داری تو ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے سب سے پہلی دس گائی وہ ہوتے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں. اچھا ایک چیز جو آج کا میرا جو سوال ہے یا پھر جو کہہ لیں کہ جو کنسرن ہے میرا تھوڑا سا، اس میں یہ ہے کہ ہم سب کچھ سکھاتے ہیں، ہم اچھا اسکول میں نمبرس، پہلی پوزیشن، پھر کمپٹیشن، پھر یونیورسٹی، پھر ڈگری، ہر چیز ہم بچے کو کامیاب ہونا تو سکھاتے ہیں، لیکن کیا خوش ہونا سکھاتے ہیں ان کو کہ اپنی زندگی میں بچوں نے کیسے خوش رہنا ہے، خوشی کو کیسے محسوس کرنا ہے، خوش کیسے رہنا ہے؟ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. میرا یہ آج کا سوال بھی ہے، نہ صرف بچوں کو بلکہ بڑوں کو بھی، کہ اپنی زندگی میں خوش کیسے رہنا ہے.

0: right, जनाब, कुछ पुरानी यादें हमारे लिसनर्स जो ना ताज़ा कर रहे हैं, कुछ सपने, पुराने वक्त, पुराने लम्हात, पुराने दोस्त, पुराने बुजुर्ग, क्या प्यारे लोग थे ना। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम। जी सर,
1: मैं अर्शद राही गल करदा पिया फैसलाबाद।
0: अच्छा जी, अर्शद साहब की हाल ने, ठीक हो?
1: हाँ जी ठीक ठाक है। मैं क्या सर जी तुम याद की कॉल ऑन एयर है जान
0: सर? ऑन एयर, ऑन एयर सर, मुकम्मल ऑन एयर हो तुसी इस टाइम।
1: मैं क्या, मैं अर्शद राही गल करदा
0: जी। अच्छा सर,
1: गण फैसलाबाद तो
0: मेनू
1: लेकिन आज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਵਾ।
0: ਬਸ ਦੇਖ ਲੋ, ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁੱਕਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1: ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ
0: ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
1: ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਸੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ।
0: ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ
1: ਮਿਲਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਹੁੜੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
0: ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ।
1: ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ
0: ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਕੱਟ ਗਈ। Alright, जनाब, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है, फिर उसके बाद आपको एक बड़ा ही जबरदस्त ट्रैक मैंने लाइनअप किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी सर, मुझे ये बताएं कि आप खुश होते हैं जिंदगी में?
2: उस्ताद मोहतरम फरहान खान साहब, मैं हमेशा खुश रहता हूँ और वन वन में भी खुश रहता हूँ और आप आपकी तरह खुश रहता हूँ।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने हैं आप।
2: मैं 101 में भी खुश रहता हूँ और आपके शो में खुश रहता हूँ। ये 101 शो है तो हमेशा खुश रहता हूँ, कभी उदास नहीं हुआ, हमेशा लोगों में बिहेवियर करता, निछावर करता हूँ और हमेशा निछावर करता रहूंगा। अच्छा,
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी।
2: कभी परेशान नहीं हुआ, कभी उदास नहीं हुआ, लेकिन हमेशा मैं खुश रहता हूँ।
0: बहुत खूब।
2: तो सादे मोहतरम और खैरियत है
0: सर? अलग का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक
2: खुश रहता हूँ और अपने आज उस्तादों के साथ आज डांस की तरह खुश रहता हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, अल्लाह ताला वैसे ही खुश रखे आपको।
2: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
2: दुआ करना, एक मिनट में सलाम पेश करना चाहता हूँ, एक शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ।
0: जी जी,
2: बहुत शुक्रिया। मैं इश्तियाक मलिक मेरा नाम है। लोग अक्सर कहते हैं कि आपका नाम क्या है। मैं रेडियो एंड टीवी फनकार हूँ, मेरा नाम इश्तियाक।
0: जी जी सर,
2: मैं शेर आपकी नजर कर रहा हूँ, फिर दो बंदों को सलाम दूंगा आपकी इजाजत से।
0: सर,
2: मैं उम्र भर ना दे सका कोई जवाब उसे फरहान, मैं उम्र भर ना दे सका कोई जवाब उसे फरहान, वो एक नजर में, वो एक नजर में इतने सवाल कर गई फरहान।
0: वाह वाह, बहुत खूब जी, बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब, सलामत रहें।
2: जरा मैं एक शायद इंसारी साहब हैदराबाद से, उन्हें सलाम पेश करता हूँ। लाहौर से साजदा बेटी की सलाम पेश करता हूँ और रक्षा बेटी को सलाम पेश करता हूँ। उसके अलावा हमारी बेटी है अनीला खान, उन्हें भी सलाम पेश करता हूँ। इसके अलावा हमारी कमांडर बेटी है जी वनवर की सदब रानी को सलाम पेश करता हूँ।
0: बहुत शुक्रिया जी, ओके जी, ओके जनाब। कॉलों के सिलसिले भी जारी हैं और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ट्रैक हम चलाने जा रहे थे तो क्यों ना आपकी समातों की नज़र किया जाए। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है जो कि मैंने लाइनअप किया हुआ है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि पहले वो ट्रैक चल नहीं सका, लेकिन और एक ट्रैक हम चलाने जा रहे थे तो क्यों ना आपकी समातों की नज़र किया जाए। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है जो कि मैंने लाइनअप किया हुआ है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट

0: On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan.
1: नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का अक़वामे मुत्तहिदा टर्जनिज़म
2: मतलब वो सिर्फ इस चीज़ को समझते हैं कि हमने गिफ्ट ले लिया उसको, वो ये नहीं देखते कि इसका
3: वेल जनाब वेलकम बैक और वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ख़िताब फरमा रहे थे और आप सब ने ये ख़िताब सुना। अभी हम बढ़ेंगे एक बहुत ही खूबसूरत से मिली नगमे की जानी, फिर उसके बाद दोबारा लौट के आएंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे रेडियो पाकिस्तान एफ़ एम 101 लाहौर के सीनियर प्रोड्यूसर जनाब ज़ुबैर बशीर साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और आज के वज़ीर आज़म साहब के इस ख़िताब के हवाले से हम उनसे बात करेंगे। सो बढ़ते हैं मिली नगमे की जानी।

0: आजकल मैं अपनी कुछ वालिदैन को मैं चूल्हा चूल्हा कर रहा हूँ, तो वो जो जाप वाले करते हैं ना, जो तेरे जाप करते हैं ना
1: जी जी,
0: तो वो बच्चों को ना बेचारों को मुलाजिमों के हाथ में देते हैं और आकर उनको बोतल वाला दूध पकड़ाते हैं। फिर वो उनसे अच्छी तवक्कु कैसे कर सकते हैं कि हमारे बच्चे साथ अच्छी तवक्कु करेंगे, सलूक करेंगे या ये खुश रहेंगे? पॉसिबल नहीं है ना।
1: ठीक,
0: तो आप अपने हाथ से बच्चों को पालेंगे, अपने हाथ से उनको खुश रखेंगे, तब वो बड़े होके आपके खदमत करेंगे, आपके अच्छे तवक्कुआत पे सवाल करेंगे ना।
1: बिल्कुल ठीक, ठीक जनाब।
0: कहने चाहिए कि आजकल के माता जो होते हैं उनको बच्चों को ज़्यादा वक्त दे दें, और बाप तो बेचारा सुबह से होता है ना, वो हो या ना हो, माँ को तो साथ होने चाहिए।
1: सर सर सर सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच सर सर सर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। राइट जनाब, ऑल द वे चित्राल से हमें कॉल थी, थैंक यू सो मच। हिरा फातिमा हमें सुन रही है इस वक्त और कहती हैं कि एक नेमत है खुशी और दिल का मुतमिन रहना ज़रूरी है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अगर दिल में मुतमिन नहीं तो खुशी हम में नहीं रह सकती, और बहुत बड़ी नेमत है खुश रहना, जिसको अता हो जाए वो खुश नसीब है। वो वासिफ़ साहब का एक कॉल है ना, खुश नसीब वो है जो अपनी किस्मत पे खुश है। तो अच्छा जी, ये कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, सी ए सदाम हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। हमादुल्ला मलक खेल, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज भटिया हमें सुन रहे हैं सगोदा से। जाहिद भाई थैंक यू सो मच, सियालकोट से हमें मैसेज करते हैं। साजिद खां अली हमारे साथ हैं। एम रज़ा चौधरी थैंक यू सो मच। गुल यासीन नाज हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे आज तक नहीं पता चला गुल यासीन जो हैं ये सुन रहे हैं या सुन रही हैं। अच्छा मोहम्मद हफीज़ रहमान हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। रिहाना खान हमारे साथ हैं, साजिद अली हमें सुन रहे हैं, एम रज़ा चौधरी थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। एक कॉलर लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आज ज़ैदी साहब ने चाय भी नहीं पिलाई हमें।
2: रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: जी सर, कौन साहब, कहाँ से?
2: फरहान भाई लाहौर, शादबाग से मोहम्मद नवीद यूसुफ बात कर रहा
1: हूं। जी नवीद यूसुफ साहब, क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू के हवाले से?
2: सर पहली बात तो ये चाय पीनी है तो मेरी तरफ आएंगे।
1: नहीं, आपको नहीं पता जो ज़ैदी साहब की चाय है ना, वो चाय कहीं नहीं मिल सकती।
2: वो वैसे इत्तेफाक की बात है, ये तो सिर्फ मुझे भी हासिल है जिनके आपकी चाय पीने।
1: चलिए, खुश नसीब हैं आप भी। तो क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से?
2: सर मैं यही कहना चाहूँगा कि खुश नसीबी सबसे बड़ी, तो पहले ये लोगों तक मैं कहना चाहता हूँ कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, आज़ाद मुल्क में, पहली बात ये
1: अल्हम्दुलिल्लाह
2: सबसे बड़ी खुशनसीबी हमारे लिए यही है,
1: बेशक।
2: और दूसरी बात रही, सबसे पहले मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि देखें, जहाँ जहाँ तक पूरी दुनिया में देख लें, हमें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से नवाजा हुआ है। साल में 12 महीने में सर 4 मौसम कहीं भी पूरे ऑल वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे आप।
1: बिल्कुल ठीक,
2: यहाँ तो गर्मी है तो गर्मी है, सर्दी है तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, लोग धूप को तरसते
1: हैं। बिल्कुल ऐसे जी। अरे आप खुश कैसे रहना ये बताएं?
2: खुश रहना सर यही है कि बस जिसने मालिक ने दुनिया पैदा की है उसका और उसके नबी का जिक्र करें,
1: माशाल्लाह,
2: खुशियाँ ही खुशियाँ।
1: बहुत खूब सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। और क्या खूबसूरत बात की आपने जी, मालिक का शुक्र अदा करते रहे हर वक्त हर लम्हा। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम,
1: कैसी हैं आप?
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ।
1: आखिरकार आपकी कॉल मिल गई है ना,
3: शुक्रिया।
1: वैसे कमाल है, आपकी कॉल आखिर में मिल ही जाती है ना, और करती भी आप

अच्छा जी, जब कभी हम किसी को भी मिलते हैं, किसी को भी पहली दफा हमारी मुलाकात होती है, बात होती है, या हम उसको देखते हैं, तो उसके बारे में एक परसेप्शन जब हम क्रिएट करते हैं अपनी, कि यार ये शख्स ऐसा होगा, या इसकी आदत ऐसी होंगी, ये इस तरह से बिहेव करता होगा, इस तरह से रिएक्ट करता होगा, और इसके अंदर ये चीज़ें होंगी, और पहली मुलाकात में उसके पहनावे से, उसकी शक्ल सूरत से, उसकी हियत से, या उसके बोलचाल से, या उसकी किसी एक आध एक्टिविटी से हम उसके बारे में जजमेंटल हो जाते हैं और उसको जज करते हैं कि यार ये वाला ना बंदा ऐसा है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक लम्हे के लिए मेरे बारे में सोचिए, तो आप सारे लोग अपने माइंड के अंदर कोई एक ना एक परसेप्शन मेरे बारे में डेवलप ज़रूर करेंगे। जो लोग पुराने सुनने वाले हैं, वो परसेप्शन शायद मेरी पुरानी बातों को जहन में रख के, कभी कोई बात उनके दिमाग में होगी, या फेसबुक के ऊपर कोई तस्वीर आपने देखी, या उसको देख के, या कहीं आपसे मेरी मुलाकात हुई तो उसको देख के, मेरे उठने बैठने को, खाने पीने को, पहनने ओढ़ने को देख के आप एक परसेप्शन डेवलप करेंगे मेरे बारे में। और जब कभी आपके साथ मेरी टेलीफोन कॉल के ऊपर बात होती है, आपसे कहीं मुलाकात होती है, तो मैं आपके बारे में कोई ना कोई परसेप्शन डेवलप करता हूँ कि यार ये वाला शख्स, या ये वाली जो खातून हैं, या मर्द हैं, या जो भी हैं, ये इस तरह से हैं, ये इस तरह के हैं, इनके अंदर ये वाली बातें हैं, ये मासूम हैं, ये विटी हैं, ये बहुत नॉटी हैं, ये बहुत चलाक हैं, ये बहुत ऐसे हैं या वैसे हैं। हम कोई ना कोई कमेंट पास करते हैं, किसी एक पर्सनालिटी को कोई एक टैग जरूर लगाते हैं। और मेरा तो वैसे भी बड़ा शौक है, मैं तो चेहरे पढ़ता हूँ ना, अब मैं कोशिश करता हूँ मैं जब भी चेहरा पढ़ूँ, और उस चेहरे को पढ़ने के साथ जब मैं उसकी पर्सनालिटी को थोड़े अरसे के बाद जब जज कर लेता हूँ, तो फिर मैं पहली वाली जो अपनी परसेप्शन है उसको अपने पास याद रखता हूँ कि यार मैंने इसके बारे में सबसे पहले क्या सोचा था। एंड आई एम लकी इनाफ कि मुझे जो है वो 60-70% अगर मैं कहूँ, या 50% ऐसा कहूँ, कि मेरी परसेप्शन जो पहली दफ़ा होती हैं, जो पहली दफ़ा मैं किसी शख्स को देखता हूँ या उसको परसीव करता हूँ, मेरी 60-70% करेक्ट होती है हमेशा। लेकिन ऐसा भी होता है कि 40%, 30%, 20% या 10% कुछ ऐसा भी होता है, या 5% ऐसा भी होता है कि वो शख्स वैसा नहीं निकलता। लेकिन ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि किसी को मैंने कुछ सोचा है, परसीव किया है, लेकिन वो 100% अपनी पर्सनालिटी जो मैंने सोची थी उसे डेविएट करता है। ऐसा बहुत बार हुआ कि किसी के बारे में मैंने कुछ सोचा कि यार ये तो बड़ा खड़ूस आदमी है, यार ये तो बड़ा एरोगेंट है, या इसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, या मैं कहूँ कि ये बहुत चलाक टाइप आदमी है। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब वो मेरे साथ बैठा उठा, हमने खाया पिया, इकट्ठे वक्त गुजारा, तो मैंने फील किया कि यार ये ऐसा नहीं है। और मजे की बात एक और है, ट्विस्ट की बात क्या है, अभी जो शख्स मेरे जहन में आ रहा है ना, जिसको मैं सोच के आपके साथ ये बात कर रहा हूं, उसको पहली दफा जब मैंने देखा था, और पहली दफा जब मेरी उसके साथ मुलाकात हुई थी, तो मुझे लगा कि यार ये शख्स ना बड़ा एरोगेंट है, और ये अपनी दुनिया में बड़ा मस्त है, या उसको लगता है कि यार मैं बहुत बड़ी तोप चीज हूं। अब मैंने तकरीबन 3-4-5 महीने शायद उस शख्स को मुंह नहीं लगाया, उसने मुझे मुंह नहीं लगाया यार। अच्छा, वो मुझे ईगोइस्टिक समझता रहा, मैं उसको ईगोइस्टिक समझता रहा। आफ्टर 4-5 मंथ्स मुझे लगा कि यार चलें, बस सब प्रोफेशनल ताल्लुक है, बातचीत तो करनी पड़ेगी, मुलाकात तो करनी पड़ेगी। तो मुलाकात भी होनी शुरू हुई, बातचीत भी होनी शुरू हुई, और मुलाकात और बातचीत होते होते फिर ऐसा हुआ कि वक्त गुजरता गया, कोई 1-2 साल गुजरे, और जब 3 साल हमारा ताल्लुक साथ रहा, तो आफ्टर 3 ईयर्स मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि ये जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, उनमें से सबसे बेस्ट है। इसमें तो ईगो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ईगोइस्टिक नहीं है।

फिर सबसे बड़ी ट्विस्ट की बात जो मैं आपके साथ करने में लगा हूँ और जो मैं आपको कहने वाला था कि मैं ट्विस्ट की बात क्या हुई कि उसके साथ 3 साल का और अरसा गुजरा और इट्स बिन आई थिंक सो 8 years और 9 years मेरा उसके साथ ताल्लुक रहा। तो मुझे पिछले कोई 1 साल से महसूस होने लगा कि यार वाकई ये तो बंदा इगोइस्टिक है ना। मजेदार बात। वैसे आप कभी कभार सोचते हैं एक नज़र के अंदर किसी को आप अगर परसीव करते हैं, किसी को देखते हैं और आप उसके बारे में एक पर्सनालिटी एनालिसिस क्रिएट करते हैं कि यार ये शख्स जो है ना ये ऐसा है। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलता है कि यार ये ऐसा नहीं है। और फिर आपको कभी कहीं 9 सालों के बाद पता चले कि यार ये तो वही वैसा ही शख्स है जैसा उसको मैंने पहली दफा देखा था तो मुझे लगा था। तो फिर आपको लगता है कि यार ये क्या मिथ था या ये क्या साइंस थी। तो होता ये है कि आप जब तक आप किसी के साथ आपका ताल्लुक नहीं होता तो वो आपके साथ बड़ा रियलिस्टिक होता है। जो उसकी इनर पर्सनैलिटी होती है या जो उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी होती है वो वही पोर्ट्रे कर रहा होता है, क्योंकि उसका आपके साथ ताल्लुक नहीं है, उसका आपके साथ मफाद शेयर नहीं है या उसके साथ आपका कोई वो कहते हैं ना सूद फ़ायदा नहीं है आपके साथ उसका। तो वो आपको वही चीज़ें दिखा रहा होता है जो वो ओरिजिनली होता है। लेकिन जैसे जैसे आपके साथ उसके बेनिफिट शेयर होना शुरू हो जाते हैं, आपके ताल्लुक बनना शुरू होते हैं, आप उठना बैठना शुरू करते हैं, तो फिर आपके साथ एक उसकी अगर फ्रेंडशिप भी शुरू हो जाती है तो अपनी फ्रेंडशिप को बचाने के लिए कुछ चीज़ें वो कॉस्मेटिकली कर रहा होता है, कुछ चीज़ें एक्टिंग हो रही होती है, कुछ चीज़ें वो शायद आपसे छुपा रहा होता है, कुछ चीज़ें आपसे वो नहीं कह रहा होता और कुछ चीज़ें आपको वो जो बता रहा होता है वो एक्चुअली हो नहीं रही होती, लेकिन वो आपको बता रहा होता है, बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत लॉयल हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा आशना हूँ। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको जब वक्त गुजरता है तो समझ आती है कि नहीं यार ये वही पर्सनैलिटी है जो मैंने पहली नज़र में परसीव की थी। और ये हमेशा नहीं होता, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप पहली दफ़ा जिस पर्सनालिटी को देखते हैं और आप उसके बारे में एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं और फिर वक्त के साथ आपको पता चलता है कि ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है, मैंने इसके बारे में गलत इमेजिनेशंस क्रिएट की थी। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये डिपेंड करती हैं कि सामने वाला शख्स क्या पहनता ओढ़ता है, किस तरह का खाना पसंद करता है, किस तरह के कलर्स उसको पसंद हैं, किस तरह की वो गुफ्तगू करता है, किस तरह की चीज़ें उसको पसंद हैं, उसका म्यूज़िक इंटरेस्ट किस तरह का है, उसकी गाड़ियों का इंटरेस्ट किस तरह का है, वो सवारी किस तरह की पसंद करता है, वो रहना सहना कैसे पसंद करता है। अच्छा, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना ये आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती हैं और आपकी पर्सनालिटी को क्राफ्ट करने के लिए ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आपको कलर कौन सा पसंद है, आप खाना पीना कौन सा पसंद करते हैं, इवन आप डिशेज़ के अंदर जो चीज़ आपको डिश जो है ना जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वैसे तो पेट भरने के लिए सभी चीज़ें इंसान खा लेता है और जो जो चीज़ें उसको मिल जाएं, कभी भूख लगी हो तो सभी कुछ चल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें कभी किसी की फेवरेट होती हैं। जैसे कि मेरी जो फेवरेट है वो सी फूड है, मुझे सी फूड बहुत पसंद है। अब सी फूड के बारे में मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप AI से सर्च करिए कि सी फूड जो लवर्स होते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। रंगों में जो शौक कलर पसंद करते हैं वो जज्बाती होते हैं, जैसे कि सुर्ख रंग, नीला रंग, अगर मैं कहूँ तो इस तरह के जो कलर्स होते हैं वो जो इस तरह के कलर्स पसंद करते हैं वो जज्बाती होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देते हैं, वो दिल के बहुत साफ होते हैं। जो हल्के रंग पसंद करते हैं ना, लाइक अगर आप कहें कि आपको वाइट कलर, एश वाइट, या आपको चारकोल कलर पसंद है, या आपको इस तरह के कलर्स अगर पसंद है, तो उनकी पर्सनैलिटी बड़ी धीमी होती है, वो धीमा बोलना पसंद करते हैं, धीमा चलना पसंद करते हैं, रिएक्ट बड़े सोच समझ के करते हैं, वक्त लेते हैं बात करने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए वक्त लेते हैं और फिर उस रिश्ते को काफ़ी देर तक लेकर आगे चलते भी हैं। तो हर पर्सनैलिटी के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स होते हैं, लेकिन आज की जो जिस बात के ऊपर मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स आया हो कि जिसके बारे में आपने सोचा हो कि यार ये इस तरह का है या इस तरह की आपने उसके बारे में परसेप्शन क्रिएट की हो और फिर बाद में वो वैसा ना निकला हो, या आपने किसी के बारे में परसेप्शन क्रिएट की पहली दफ़ा और वो 100% बिल्कुल वैसा ही निकला, इस तरह की कोई बात आपके जहन में कोई शख्स आ रहा है या किसी के साथ आपका ताल्लुक है, कोई रिश्ता है ऐसा कि जिसके साथ आपकी मुलाकात हुई बड़ी अनएक्सपेक्टेड हुई। बाज़ अवकात आपकी लड़ाइयाँ होती हैं किसी जगह पे
आपकी किसी के साथ अगर कोई रिश्ता या दोस्ती बनती है तो सबसे पहले आपका आगाज लड़ाई से होता है, नफरत से होता है, दुश्मनी से होता है, बाद में आपकी इतनी मजबूत दोस्ती बनती है कि उस जैसा दोस्त आपका कोई नहीं होता। अगर ऐसा कोई वाकया को किस्सा आपके पास है तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे हाजी केवी कहते हैं 12:26 है, 26 सितंबर है 2026। वाह वाह वाह केवी, क्या टाइमिंग है भाई, क्या टाइमिंग है। 12:26 है, 26 सितंबर है 2026 है। और मेरे साथ मेहदी हसन है। मेहदी हसन साहब क्या कहते हैं जी, कहते हैं कि एक बार चले आओ, एक बार चले आओ कि तुम्हें दिल के राज कहने हैं।

0: चुकी हैं। अब अगर आप मैक्सिमिनी को सुने, आप हमारे पड़ोस में एक दो जो है वो कॉमेडियन आए हैं उनको अगर आप सुने, अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर जो अलबेला जो प्रोग्राम करते हैं उनको देखें, अच्छा जितने भी प्राइम टाइम के अंदर जितने भी मजाक के प्रोग्राम हो रहे होते हैं उनको देखें, तो मजाक की बड़ी किस्में हो चुकी हैं। उसमें एक
1: बिल्कुल
0: किस्म ये भी है कि कुछ लोग खुद आके अपने बारे में बात करवाना चाहते हैं। अब जितना टाइम उन साहिबा को मिला है उतना किसी और को नहीं मिला, ठीक है ना? तो अब जितनी रिस्पेक्ट उनको मिली है शायद आपकी नज़र में उनको रिस्पेक्ट नहीं मिली, उनको रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा मिली है। और उनको हम वैसे ही छेड़ रहे थे कि भाई वो मुस्तफ़ा कह रही थी, अम्मा कह रही थी आप मुस्तफ़ा कह रही हैं। जब उन्होंने आखिर में नाम सही लेना शुरू किया तो मैंने कहा नहीं जी आप तो वो मुस्तफ़ा नहीं हो, मुर्तज़ा है। तो ये एक एक एक मजाक के एंगल से बात थी।
1: नहीं, वो उसको मैंने इतना ज्यादा नोट किया, वो तो ठीक है, वो तो मुझे भी अच्छा लग रहा जब
0: हाँ देखा देखा, माने ना मजा आया।
1: वो मुस्तफा कह रहे थे, आप मुस्तफा कह रहे थे,
0: देखे
1: वो मुस्तफा कह रहे
0: अच्छा
1: थे, आप
0: कहनी साहब
1: मुस्तफा कह रहे
0: कहनी साहब, बात लंबी हो रही है लेकिन देखा आपने कबूल कर लिया कि मजा आया आपको, ठीक है अच्छा लगा आपको। चले थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ जी कहनी साहब आखिर मन ने फिर मजा आया।

अच्छा ये प्यार का एंगल है, सताते क्यों हो मुझसे तुम? ओके जनाब, मैं फीडबैक जरा पढ़ लेता हूँ जी। फेसबुक पे फीडबैक आ रहा है जी, कि और फीडबैक ये आ रहा है कि ओके जी, कोमल तक के मैसेज हमने पढ़े थे और कोमल कहती हैं कि मुझे सब कहते हैं कि मैं हर वक्त हंसती रहती हूँ और मैं बहुत मजाइया हूँ। ओके जी, तो वकास तबस्सुम मेरे साथ हैं रावलपिंडी से। माँ जबी कहती हैं आपको देख के आप जो है वो चलो जी, थैंक यू सो मच माँ जबी, बहुत शुक्रिया। एजाज अहमद मेरे साथ हैं जी, वो कहूटा से हैं, सलाम कह रहे हैं और कहते हैं हाल अहवाल कैसे हैं, लाजवाब प्रोग्राम है, जबरदस्त कंपेयरिंग है, थैंक यू। अरूज मुझे कहती है मुझे तो आप शर्मीले लगते हैं। हाँ अरूज, बस मैं जब रेडियो से बाहर निकलता हूँ ना तो निकाब कर लेता हूँ, अक्सर निकाब में रहता हूँ मैं। और साइमन सिद्दीकी मुझे लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम के भी, मासूमियत आपके पास से भी नहीं गुजरी। अब ये देखिए इनकी परसेप्शन है ना। और फिर अरूज कहती है जी मुझे लोग जो हैं वो फ्रेंडली कहते हैं, और नादान मेरे साथ हैं वो कहते हैं प्रोग्राम अच्छा है जी। हरम अब्बासी कहती हैं कि भी आपकी पोस्ट नहीं मिलती, तो पोस्ट लगी हुई है जिसके ऊपर आप कमेंट कर रही हैं। हरम अब्बासी, यही मेरी पोस्ट है। अच्छा अरूज लिख रही हैं जी कि जी पिछले फ्राइडे को बहुत हंसाया, मैं खुद भी लॉन्ग टाइम के बाद बहुत ज्यादा हंसी थी, आप तीनों के लिए बेस्ट विशेस। कोमल लिखती हैं जी कि वैसे कभी कभी ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, लिसनर्स एंजॉय कर रहे थे और हमने बहुत एंजॉय किया। अच्छा कैनी साहब, मैं खुद से नहीं पढ़ रहा, ठीक है आप फेसबुक के ऊपर जाके देख सकते हैं, लोग कॉमेंट कर रहे हैं और लोग अपनी राय दे रहे हैं। अभी मैं कॉलर्स भी लेता हूँ और उन कॉलर से भी राय लेता हूँ।

कहती है पानी जो है वो सबसे बेस्ट कौन सा होता है? पानी जो है वो सबसे बेस्ट वो वाला होता है जो आपको आबशारों से और आपको चश्मों से जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक वाटर आपको मिल रहा होता है वो बहुत बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रीटेड वाटर, क्योंकि जो ट्रीटेड वाटर होता है उसके अंदर मिनरल्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं और केमिकल्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं, नेचुरल वो नहीं रहते और उसको उसकी जो है वो माइक्रोबायोलॉजिकल कॉन्टिमेशन भी होती है जी। मुश्किल वर्ड है भाई, लेकिन कह रही है जी कि पानी वो वाला इस्तेमाल कीजिए जो आपको आपको नेचुरल स्ट्रीम से मिलता है, और बाकी वो पानी बहुत मज़ेदार होता है, वो लकी हैं वो लोग जो नेचुरल स्ट्रीम से पानी को लेते हैं, जो जिनको चश्मों का पानी मिलता है, आबशारों का, दरियाओं का पानी मिलता है।

सदफ अनवर है मेरे साथ जी, कराची से हैं, प्रोग्राम सुन रही हैं और सदफ लिखती हैं जी के अंकल ने बहुत अच्छी बातें की हैं, मुझे बहुत पसंद आई हैं अंकल की बातें और मैं दिल चाह रहा था कि अंकल कॉल बंद ही ना करें और मैं बस सुनती रहूं। आपने अंकल की कॉल इतनी जल्दी बंद क्यों कर दी है? आप थोड़ा लंबा कॉल लेते ना, आपने इतनी थोड़ी बात क्यों की है अंकल के साथ? और कह रही है जी कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा था, आप अंकल के साथ बात कर रहे थे और यकीनन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और इनकी बेगम तो बहुत खुश होंगी इनसे कि जब ये बातें करते होंगे, क्योंकि इतनी मजेदार बातें करते हैं अंकल। और कहती है जी कि मुझे जो है वो गाना भी आपने सुनाना है, और गाना जो है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।

0: बिल्कुल जनाब, ऐसा है कि मेरे जो है वो रेगुलर कॉलर्स में से एक कॉलर है, कैनी साहब. कैनी साहब, आई लव यू. कैनी साहब, फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट आई लव यू. कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सेटिंग कर लो, बालो. हेलो. अच्छा चले जी, मैं अगले कॉलर को ले लेता हूँ, तब तक आप सेटिंग कर ले अपनी रेडियो की. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी.
1: जी वालेकुम सलाम उस्ताद बोहतरम फोरम.
0: अच्छा, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. अच्छा, आपको मैंने बताया था ना, क्या बताया था
1: उस्ताद बोहतरम? कल मेरी कल शो, जब आपके शो में आया था तो मेरी आप एयर कॉल थी
0: जी. नहीं नहीं, आपकी ऑन एयर कॉल थी
1: उस्ताद बोहतरम. मुझे पता चला है कि आप एयर कॉल थी. चलो कोई बात नहीं, खैर है.
0: अच्छा, पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि आपके लास्ट प्रोग्राम में ऑन थी.
1: मतलब जो शो था, मैंने मुकम्मल तौर पर सुना था.
0: अच्छा,
1: और मुझे भी, मैं पता है उनके शो में भी आया करता हूँ जनाब. अपना जो इनके शो में भी मैं आया करता हूँ, मुतबार हैदर साहब के शो में.
0: जी जी.
1: लेकिन याद, मेरे ख्याल के मुताबिक यादगार शो था बन वाला.
0: अरे वाह, वोट आ गया कैनी साहब, एक वोट.
1: और एक आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं वो भी दो बड़े मासूम है मेरे लिए, एक वो आगे मासूम है, एक आप मासूम है.
0: मैं मासूम हूँ ना, बस ये कहनी साहब, मैं मासूम हूँ, देख लें. मुझे आपने बख्शिश दे दी. थैंक यू जी, लाला बहुत शुक्रिया आपका.
1: बात सुने ना, बात सुने सादे मोहतरम, आप दोनों मासूम है और आपको भी मासूम कहता हूँ तो मैं मुज्तबा हैदर साहब को भी. लेकिन ये जो आपने जो शो किया था वो मेरे ख्याल के मुताबिक नंबर वन और यादगार शो था.
0: चलें जी लाला, बहुत शुक्रिया. और लाला आपने
1: दोबारा चलाया जाए.
0: बिल्कुल, दोबारा करते हैं. लाला आपने मेरे साथ वादा किया था कि मैं बहुत कम कम बात करूंगा.
1: अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक मैं आपकी नजर करना चाहता हूँ.
0: नहीं, आपने आपने मुझे कहा था मैंने बहुत कम बात करनी है और मैंने ये सीख लिया है. देखें, अब अपनी बात पे आप कायम रहेंगे.
1: इश्तियाक मलिक मेरा नाम है, मैं पूरा अपना नाम भी बता दूं ना.
0: हाँ मलिक साहब, बिल्कुल.
1: कोई तारा लोई वाला.
0: जी जी जी.
1: कोई तारा लोई वाला.
0: जी.
1: कोई तारा लोई वाला.
0: हाँ, लो आ गई. वाह जी वाह, वाह जी वाह. लाला खुश रहो, आबाद रहो.
1: मेरे सारे उतारे बोतरों में मेरे, उन्हें बहुत बहुत सलाम पेश कर.
0: वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया.
1: और कमांडर बानोवार बेटी सतपुरानी को भी मेरा बहुत.
0: ओके जी, बाय बाय जी, बाय बाय. मलिक साहब आए हैं जी. मलिक साहब कैनी साहब के जो है ना वो खिलाफ वोट दे के चले गए. कैनी साहब एक ही चक्कर है. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो हेलो. ये कौन है यार, ये कौन है जो टिक टिक टिक टिक टिक कर रहा है? वालेकुम सलाम जी जनाब.
2: ये शफीक बोल रहा हूँ जी, कोटा से.
0: जी शफीक साहब, कैसे हैं आप?
2: अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप खैरियत से हैं?
2: अल्लाह का शुक्र.
0: जी शफीक साहब, क्या कहने आते हैं?
2: अभी दो बंदों की गुफ्तगू सुनी है.
0: जी जी.
2: तो ये दिन पे थोड़ी सी आपको मेरा तनकीद भी आएगी, वो भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी
0: सर.
2: तारीफ होगी उसमें भी आपको थोड़ा सा उत्साह मिलेगा, लेकिन यह कि जो तनकीद आएगी उसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको.
0: नहीं शफीक, आप शफीक नाम है ना आपका?
2: जी जी जी.
0: शफीक साहब, आपको लगा है 7 मिनट की कॉल के अंदर कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था?
2: ये क्यों नहीं, बिल्कुल. वो तो हम भी कह रहे हैं, वो दिन एंजॉय किया. देखें अब माहौल इस किस्म का बन चुका है.
0: नहीं नहीं, नहीं, नहीं शफीक साहब, शफीक साहब
2: होता है उसको एंजॉय करते हैं.
0: अच्छा शफीक साहब बात सुने ना, मैं कह रहा हूँ जब मैं कैनी साहब से महवे गुफ्तगू था, 7 मिनट मेरी उनके साथ बात हुई, आपको किसी एक पॉइंट पे भी लगा कि मुझे कैनी साहब की बातें पसंद नहीं आ रही?
2: नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं लगा.
0: मुझे अच्छा लग रहा था ना,
2: बिल्कुल अच्छा. आप देखो अब उनको थोड़ा सा और उस तरफ लेके जा रहे थे, उनको छीनने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि थोड़ी सी और जो है ना उनकी गुफ्तगु जो है ना वो थोड़ी सी तवील हो जाए, ताकि वो अपने दिल की जो बात है वो निकाल सके.
0: तो दिल की बात निकाली, फिर उन्होंने कहा मजा आ रहा था.
2: मजा आ रहा था. तो बाकी यह कि थोड़ा सा मुझे उस दिन वो था, लेकिन वो घर है निशान भाई का, एक अपना एक स्टाइल है, अपना मूड है. वो जब बात करते हैं तो वो अपने प्रोग्राम में भी इसी तरह बात हुआ बात करते हैं, वो मजाकन बात करते हैं. ये नहीं कि किसी कालो की इंसल्ट करते हैं, या वो एक मजाक में उस दिन वो उन्होंने बहने में सुना है बोला उन्होंने, लेकिन यह कि वो किसी की ये नहीं थे किसी की दिलादारी करनी थी.
0: अच्छा बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे.
2: वो एक प्रोग्राम का माहौल ऐसा बन चुका था उस पर, उसकी वजह से फिर उन्होंने इस तरह शुगर मेले में वो बात की है। यानी कि किसी कलर की ऐसी बात थी कि किसी का दिल झुकाना था।
0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू शफीक साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, ख्याल रखना। थैंक यू। अच्छा यार, मैंने 3 सवाल आपसे किए थे, वो सवाल उधर ही रह गए, प्रोग्राम पिछले के ऊपर बात होना शुरू हो गई।

0: ओके जी, एक कॉल और लेते हैं और उसके बाद फिर गाना आपको सुनाते हैं और वापस आते हैं और फिर मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। जनाब
1: सर क्या हाल है?
0: बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: नाम बताइएगा प्यारे भाई।
1: राजा मुदस्सिर इस्लामाबाद से।
0: जी राजा साहब क्या कहना है?
1: फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ।
0: लग रहा है मुझे आप पहली दफा कॉल कर रहे हैं। गर्मी लग रही है आपको वैसे?
1: जी
0: गर्मी लग रही है आपको?
1: नहीं मौसम तो बहुत अच्छा है।
0: फिर आपने पंखा क्यों चलाया हुआ?
1: आपको पंखे की भी आवाज आ रही है?
0: देखो मेरे साथ मुअक्कलात हैं, मैं जब मुझे कोई कॉलर कॉल करते हैं मैं अपने मुअक्कलात छोड़ देता हूँ। मुझे बताते हैं अच्छा इसके इर्द गिर्द क्या है, अभी ये क्या कर रहा है,
1: ठीक है सब पता होता है। कोई माइक का भी मसला हो सकता है?
0: मुझे सब पता होता है।
1: तो आप ही अच्छी बात है।
0: हाँ तो बताओ मुदस्सिर क्या कहने आए हो?
1: लास्ट जो आपका जो पिछले हफ्ते जो आपका प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा था। यानी साहब ने जो बात की थी वो ऋशान नासिर भाई की बात से वो खफा हो गए, जो उन्होंने बोला था कि कॉल बंद कर दें।
0: अच्छा
1: तो इस वजह से वो
0: रेगुलर लिसनर है आपके? हाँ क्या नहीं साहब, मेरे तो जब वो
1: कॉल नहीं करते
0: बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिए।
1: ओके
0: ओके ये मेरा गाने सुनाऊंगा मैं आपको। ये क्या कहता है? कहते हैं कि काले रंग दा परांदा मेरा। मुझे आज के भी कहते हैं, आप सुन रहे हैं 101 इंटरनेशनल।

अच्छा इमरान, अगर आप इसको बड़ा डीपली सुनेंगे ना और इसके एक एक लिरिक्स के ऊपर अगर आप जाएंगे ना, तो आप बहुत सारी वाइब्स को कनेक्ट कर सकते हैं, आप बहुत सारी रोशनियों को कनेक्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल मेरे पॉइंट को समझ रहे होंगे। अगर आप अभी की रोशनी को कनेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप आने वाली रोशनी को कनेक्ट करना चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं।

ओके जनाब, वेलकम बैक। और 1:10 हैं, 101 इंटरनेशनल आप सुन रहे हैं आज केबी के साथ इस्लामाबाद के स्टूडियो से बिल्कुल बाहरराज। कराची में सुनने वालों सभी को बहुत शुक्रिया, और पेशावर में सुनने वालों आप सबको बहुत शुक्रिया, लाहौर में सुनने वालों आप सबको बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर, जहाँ कहीं से भी आप सुन रहे हैं आप सबको बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा फीडबैक जो है वो आज मुझे मिल रहा है। मोहम्मद अब्दुल्ला मेरे साथ हैं और वह कहते हैं तकरीबन आज 15 साल के बाद मैं रेडियो सुन रहा हूँ, और प्ले स्टोर से मैंने एक ऐप डाउनलोड की है। ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि जी आज रेडियो सुनते हैं और FM ऑन किया और आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। गुड टू सी यू ब्रो एंड गुड टू लिसन यू ब्रो। थैंक यू सो मच मोहम्मद अब्दुल्ला, इट्स अ प्लेजर टू मी कि आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं। तायरा मसूद मेरे साथ हैं जी, सलाम कह रही हैं। अरूज फातिमा कहती हैं कि आप 101 के ऊपर तो बहुत हंसते खेलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप रियल लाइफ में कैसे हैं, खड़ूस हैं? बिल्कुल भी नहीं अरूज, में ऐसा नहीं।

क्यों की जनाब? ओके, और गानों की बड़ी बहस चल रही थी और मैं साथ साथ जो है वो आपका फीडबैक भी पढ़ रहा था, और कुछ लोग मेरे से फरमाइश कर रहे हैं कि जी गाना जो है वो वाला गाना सुना दें, वो वाला गाना सुना दें। तो मैंने कहा जी कि मैं वो वाला डीजे नहीं हूँ ना, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, मैं वो वाला डीजे नहीं हूँ।

ओके जी, हानिया मुझे सुन रही हैं जी कश्मीर से, और हानिया कह रही हैं कि आप मेरे मैसेज क्यों नहीं पढ़ते। हानिया कहती हैं जी आप मुझे मासूम लगते हैं, आप बहुत मासूम हैं।

और अली इमरान मुझे लिखते हैं जी कि मैंने जो गाने सुनने हैं वो फिर मैं आपके प्रोग्राम के बाद सुनूंगा। बिल्कुल अली, आपने मेरे प्रोग्राम के बाद गाने सुनने हैं, और जो आपने अपना प्रोग्राम करना है वो बाकी मेरे प्रोग्राम के बाद करिएगा। आपने जो भी गाने सुनने हैं, जो भी आपने एंजॉय करना है, मेरे प्रोग्राम के बाद करना है आपने।

ओके जी, आज मुझे मासूमियत के बड़े के बात मिल रहे हैं और कुछ लोग जो मुझे जानते हैं और मेरे साथ उठते बैठते हैं वो कहते हैं यार खुर्रम तुम तो वाकई बहुत मासूम हो भाई, बहुत ज्यादा मासूम हो।

0: ओके जनाब, वन ऑफ माय इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप और इस्लामाबाद के स्टूडियो से आज के भी मुझे कहते हैं और आपका फीडबैक जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ फेसबुक के ऊपर भी। और मैं आज आपसे सवाल ये कर रहा था कि आप कभी जब किसी को पहली दफ़ा देखते हैं, आपकी कभी किसी से बात होती है, तो आप उसके बारे में डेफिनेटली एक पिक्चर क्रिएट करते हैं और उसके बारे में एक परसेप्शन आपकी होती है, तो क्या वो वैसा निकलता है नहीं निकलता, आपकी परसेप्शंस किस हद तक सच्ची होती हैं, या आपको देख के लोग आपके बारे में क्या परसीव करते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। तो इसके ऊपर आपने मेरे साथ आज जो है वो बात करनी है, तो अभी तक कोई कॉलर ऐसा मुझे मिला नहीं है कि जो उसके ऊपर बात करे। कॉलर लेते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।
0: क्या हाल है अमीर गुल साहब, कैसे हैं आप?
1: आप ठीक है सर, खैरियत से हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, सुनना अल्हम्दुलिल्लाह।
0: जी अमीर गुल साहब,
1: मैं वैसे चेहरा शनास नहीं, मैं तो हवा शनास।
0: हवा शनास?
1: हाँ।
0: वो क्या होता है?
1: लेकिन आप हवा पे बात कर रहे हैं, हवा के दोस्त।
0: हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हवा शनास हैं आप?
1: जी मैं तो हवा शनास हूँ।
0: जी अच्छा, तो बताइए
1: आपका सवाल था कि मेरे मुतल्लिक।
0: जी
1: जब आप शुरू में आए तो मुझे पता लग गया था कि आपकी उड़ान कहाँ तक होगी।
0: अच्छा,
1: मुझे ये अंदाजा हो गया था। अच्छा। और आपको एक बात भी बड़ा सलूट है।
0: जी जी,
1: ये कम्प्लीमेंट है आप मुझे।
0: जी
1: आप जब कॉल सुनते हैं किसी की,
0: जी
1: जवाब उसकी बात में से देते हैं और बड़ा टिका के जवाब देते हैं, फिर आप कहते हैं समझने वाले समझ गए होंगे।
0: अच्छा, थैंक यू अमित गुल साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी,
1: थैंक यू।
0: अच्छा बस आज इतना ही कहेंगे आप? चलें जी, थैंक यू, कमाल कहा आपने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाय हमीद गुल साहब, मैं समझ गया हूँ, समझने वाले समझे ना समझे, मैं समझ गया। खैर समझने वाले भी समझ ही जाते हैं। तायरा मसूद अस्सलाम वालेकुम कह रही है। वालेकुम अस्सलाम। नुज़्ज़त इमरान है मेरे साथ, कहती है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, मैं पहली बार आपका शो सुन रही हूँ और इससे पहले मैं मान मनसब और इमरान अली का सुनती थी, उनके बाद नहीं सुना, आपका भी अच्छा है शो जी। थैंक यू नुज़्ज़त, बहुत शुक्रिया। जिमल कहती हैं कि जी जिमल कहती हैं कि क्या आरजे जिशान का और आरजे मुज्तबा का कंबाइन शो होगा? तो जिमल मुझे आइडिया नहीं है कि कब होगा। फातिमा कहती हैं कि आरजे काइंडली प्ले मैंने तुम्हें घर से पानी मैंने तुम्हारे घाघर से पानी पिया था एंड शो इज ऑसम।

मेरे वैसे एक कंबाइन शो होना चाहिए इस बात के ऊपर ना, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए। चलो वैसे ऐसे करते हैं, अगर जिशान जाग रहे हैं तो जिशान को पूछते हैं कि जिशान को कॉल पे लेते हैं।

जो चट्टान में बसने वाली चींटी को भी रिस्क अता करता है और इस कदर तवाना बना देता है कि यही नन्ही जान हाथी जैसे अजीम जान के लिए वबाले जान बन जाया करती है।

जो ज़मीन की सख्ती से ज़िंदगी को जन्म देता है, और जब यही ज़िंदगी किसी बात पर इतराने लगती है तो उसको मौत में बदल देता है।

0: मुस्कुराते जगमगाते सब हसीन चेहरों के नाम मुज्तबा हैदर का सब अहले मोहब्बत को सलाम। जी हाँ सामाइन, अस्सलाम वालेकुम। रात के ये लतीफ़ लम्हात प्रोग्राम गुंचाए शौक़ और आपका मेज़बान मुज्तबा हैदर हाज़िर। प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा की तरह आपके लिए बहुत सारी दुआएं। सदा खुश खुर्रम रहिए, शादो आबाद रहिए, सलामत रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते जगमगाते झिलमिलाते रहिए। साइन प्रोग्राम गुंचाए शौक़, हम सब के शौक़ के क्या कहने। प्रोग्राम का मिजाज आप जानते हैं, लेकिन आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे स्टूडियो में एक ऐसे आरजे मौजूद हैं कि आप और हम दोनों उनसे मोहब्बत करते हैं और बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उनका प्रोग्राम ख़त्म हुआ, और हमने उनको बाजू से पकड़ लिया। अब भला ये तो कोई नहीं कह सकता ना कि जाने वालों को कहां रोक सका है कोई। हमने रोक लिया। आज जरा हंसी खुशी बातें होंगी और प्रोग्राम खुशी खुशी आगे बढ़ेगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम। खुर्रम भाई, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। ये जो अभी आपने किया मेरे साथ ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि मुझे पैसे से दो घंटे के मिलते
0: हैं। उस दिन आपने भी तो ऐसे ही किया था ना।
1: अच्छा, मुज्तबा भाई ने मुझे बोला कि खुर्रम मैं तुम्हें प्रोग्राम में शामिल नहीं करूँगा, मुझे थोड़ी देर के लिए बस मैं अपना प्रोग्राम थोड़ा स्टार्टअप कर लूँ, एक आध में गाना लगा लूँ, तो आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आप सामने बैठ जाइए। और मुज्तबा साहब ने आज में ना गेंद डाल दी। वाह जी वाह, मुज्तबा साहब सहमे हो गए वैसे
0: ना? जनाब, तो खुर्रम भाई, इस प्रोग्राम का मिजाज आप जानते हैं, इसमें बातें हुआ करती हैं, लेकिन आज तो हमने आपस में ही बातें करनी है। नहीं,
1: मेरे प्रोग्राम में तो खारिश होती है, आपकी प्रोग्राम में बातें होती हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
0: तो खुर्रम भाई बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि सुनने वालों से क्या कहना चाहेंगे आप?
1: सुनने वालों से ये कहना चाहेंगे कि वो आपको सुनना चाहते हैं और आप उनको बहुत अच्छा सुनाते हैं, और सुनने वाले सुनिए, ज़रूर सुने आपको, और बड़ी मोहब्बत से आपको सब सुनते हैं। और वाकई मुझे काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि मुज्तबा का और ज़ीशान का कोई कंबाइंड प्रोग्राम हो रहा है। मैंने कहा नहीं, ज़ीशान तो अभी अवेलेबल नहीं है, वरना अगर ज़ीशान होते तो फिर हम कंबाइंड प्रोग्राम करते। तो सुनने वालों को ये कि सुनने वालों का बहुत शुक्रिया कि वो हमें सुनते हैं मुज्तबा, और रात के इस पहर सुनते हैं। अभी 2:30 बजने वाले हैं और लोग जाग रहे हैं, स्पेसिफिकली आपके प्रोग्राम के लिए लोग जागते हैं, मेरे प्रोग्राम के लिए लोग जाग रहे होते हैं। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आप सुनने वालों की मोहब्बतों की वजह से हम रात को यहाँ आते हैं। और अभी मैं मुज्तबा भाई को जब मिला तो इनको बुखार भी है बहुत सख्त, लेकिन वो फिर भी इस वक्त जो है वो रात को यहाँ पे हैं। तो आपकी मोहब्बत का जो आलम है मुज्तबा, वो मैं ज़रूर सामीन तक पहुँचाना चाहूँगा कि मुज्तबा जो है वो बेसिकली हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो पहले जब आप इस्लामाबाद नहीं थे मुज्तबा, तो मुज्तबा स्पेसिफ़िकली प्रोग्राम करने के लिए हैदराबाद से ड्राइव करके 2-2.5 घंटे की यहाँ प्रोग्राम करते थे, और 2-2.5 घंटे की ड्राइव करके वापस जाते थे। तो मुज्तबा ऐसा शौक़ जो है वो सारे ही आरजेस को होता है, लेकिन आपको कमाल शौक़ था और कमाल शौक है कि आप अभी आपकी तबीयत जो है वो नासाज है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसके लिए मेरी तरफ से आपको ये बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, और जो सुनने वाले हैं उनका भी बहुत शुक्रिया कि उनकी मोहब्बत की वजह से आप यहाँ पे आते हैं।
0: बहुत शुक्रिया। वो मजीद अमजद ने कहा था ना कि मसीह खिज़र की उम्र निसार हों उस पर, वो एक लम्हा जो यारों के दरमियान गुजरे। तो उस एक लम्हे के लिए हम कोशिशें करते हैं, और वैसे ज़िंदगी का मकसद तो होता है कि इंसान मोहब्बतें बखेरे।
1: बिल्कुल,
0: क्या ख्याल है?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप भी तो ये काम कर रहे हैं ना
1: जी। हम भी यही कर रहे हैं, कुछ लोगों को हमारी मोहब्बत है रात में।
0: अच्छा, गुज़श्ता प्रोग्राम बहुत लोगों ने पसंद भी किया।
1: हाँ,
0: और ऐसी
1: लोगों ने पसंद किया,
0: ऐसी बातें होनी चाहिए। वैसे
1: जिशान भी मुझे मुश्तबा बता रहे थे कि मुझे बहुत फीडबैक आया, इवन मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक आया, जो लिसनर्स मेरे साथ कनेक्ट हैं, जो मुझे इंस्टाग्राम पर बता रहे थे कि लोगों ने बहुत पसंद किया उस प्रोग्राम को। आज के प्रोग्राम के अंदर भी बड़ा तस्करा हुआ उस प्रोग्राम का। सो होना चाहिए वैसे, और वीक में एक आध प्लान करते हैं उसको हम।
0: वैसे आज इरादा था मिलने का, आप ही के पास टाइम नहीं था, आज कहीं जाना था आपने।
1: जी, मेरी थोड़ी फैमिली कमिटमेंट सी, वरना आज हमने बाकी बैठे,
0: वरना हम तो अलील होने के बावजूद बिल्कुल तैयार बैठे थे। तैयार बैठे थे हम,
1: अलील होने के बावजूद खलील होने के लिए तैयार बैठे थे आप।
0: हम कयामत के खुद मुंतज़िर, छोड़ देंगे हर एक शय से रिश्ता, छोड़ देने की नौबत तो आए। अब इसको तोड़ दे करते, तोड़ देंगे हर एक शय से रिश्ता, तोड़ देने की नौबत तो आए। हम कयामत के खुद मुंतज़िर हैं, पर किसी दिन कयामत तो आए। तो खुर्रम भाई, आज क्या बात की जाए सामईन से, कौन सा मौजू होना चाहिए, कौन सा टॉपिक होना चाहिए?
1: मौजू ये होना चाहिए कि जी खुर्रम भाई को दीजिए इजाज़त।
0: अब तो
1: बात में शुरू करते हैं,
0: अब तो हम किसी और रविश पे आ गए ना।
1: आप ये कह सकते हैं कि जो खुर्रम भाई को हम देने लगे हैं इजाज़त, और अब हम बात करते हैं फिर आगे।
0: वैसे खुर्रम भाई से हम भी बहुत मोहब्बत करते हैं, और खुर्रम भाई से आप सब मोहब्बत करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आज के पहले ट्रैक की तरफ और आज की पहली पेशकश की तरफ बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी रास्ता भी है, ज़िंदगी मंजिल भी है। अगर आपकी ज़िंदगी बामकसद है तो उसे आप मंजिल कह सकते हैं
1: जी।
0: और अगर ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है तो वो रास्ता ही हुआ ना
1: जी।
0: तो जनाब बढ़ते हैं साईं मोहतरम इस पेशकश की जाने। कभी कभी भूल जाया कीजिए, आजिज भी इंसान होते हैं, उनसे गलती हो सकती है, बस दिल बड़ा किया कीजिए, माफ कर दिया कीजिए।

जनाब, रास्ते कभी रुक जाया भी करते हैं और कभी नहीं रुका करते, लेकिन इंसान तो इंसान है। इंसान को चाहिए कि जो भुला सकता है आसानी के साथ वो भुला बैठे। वो क्या है कि याद रखना ही मोहब्बत में नहीं है सब कुछ, भूल जाना भी बड़ी बात हुआ करती है। गुफ्तगू चल रही है जनाब खुर्रम भाई के साथ, और हमारा और आपका साथ है गुंचाए शौक में।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से?
1: मेहताब बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से।
0: जनाब
1: जी, जनाब क्या हाल है आपके? ठीक है, हैदियत से हैं?
0: एहसान है अल्लाह का, आप कहिए।
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। आपके शो में खुरम भाई आए हैं और बहुत अच्छा लगा जी, आप दोनों को एक साथ देखकर।
0: बहुत शुक्रिया।
1: जी सुनाए।
0: जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
2: मेहताब साहब, मैं आपसे गुफ्तगु कर सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो मुश्तबा भाई?
1: जी,
2: अच्छा मेहताब
1: खुरम भाई,
2: जी,
1: बस वो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि इख्तलाफ राय हर एक का हक होता है, लेकिन सामने वाले को भी सुनना चाहिए। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि दोनों रुख जो है वो अपनी अपनी जगह पे ठीक होते हैं,
2: अरे वाह,
1: लेकिन एक दूसरे की जो बात है वो एक्सेप्ट करना कर लेना, यही सबसे बड़ी बात होती है।
2: अरे वाह, अरे वाह।
1: और
2: कमाल साहब वही है ना कि
1: FM 101 के जितने भी आरजेज हैं उन सबको हम सलाम पेश करते हैं, खुसूसन नाइट शिफ्ट के जो लोग हैं उन तमाम को मैं सलाम पेश करना चाहूंगा कि वो अपनी जो नींदें हैं वो कुर्बान करके तो लोगों को एक सुकून एक सहूलत मुयस्सर करते हैं।
0: इनको नींद आती नहीं
1: और जी
2: चलें जी, बहुत शुक्रिया मेहताब साहब।
0: शुक्रिया, कुछ सुनाना चाहेंगे?
1: नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं।
2: आए वाह वाह वाह वाह। वो कहता है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन किसी को आसमान नहीं मिलता।
1: आसमान
2: तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो उसको वहां नहीं मिलता।
0: वाह वाह, क्या कहना
2: जी।
1: तमाम आरजेज की नजर एक छोटी सी शायरी।
2: जी जी,
1: हबीबुर रहमान मुश्ताक साहब कहते हैं कि को सुखन के उसूल आते हैं। सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं, करे कलाम तो बातों में फूल आते हैं।
2: वाह
0: वाह,
2: उसको सुखन के उसूल आते हैं, करें बात
1: तो होश फूल आते हैं।
2: वाह वाह, अच्छा आपकी आवाज
1: सुना है उसको सुखन के सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं, करे कलाम तो बातों में फूल आते हैं।
0: अच्छा,
1: सुना है उसके पढ़ाने में है मिठास ऐसी, बुखार हो भी तो बच्चे स्कूल आते हैं।
2: हाय हाय,
0: जैसे मैं बुखार में आ गया।
2: वाह वाह वाह, कमाल जी।
0: जनाब बहुत
1: जा चुका हूँ मैं कब का चिराग शब मुश्ताक, हवा के झोंके मेरे घर फजूल आते हैं।
2: वाह
0: वाह,
1: तो बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल करने का। एक छोटी सी फरमाइश आज हमारी पूरी कर दे
0: जी।
1: नियते शोक भर न जाए कहीं,
0: कल चलाया था।
2: अच्छा ये मुज्तबा भाई गा के सुनाएंगे खुद आपको।
0: अरे भाई मुझे,
1: अरे
2: वाह, मुज्तबा भाई खुद सुनाएंगे।
0: वैसे
2: आप फरमाइश कर दें, आप
0: आपको रोक करके गलत
1: कर दिया। मुज्तबा
0: जी, जनाब आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बे इंतहा शुक्रिया।
2: ओके जी, वो कहते हैं कि झूठ बोला है कोई जरूर आपने, वरना चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट ना होती। पाँव जमते ही नहीं है जमीन पर अब, हमसे शायद अब इतनी शराफत ना होती। बात करने का अंदाज ही बदल गया, शायद उनको हमसे मोहब्बत ना होती। दूर ही से ही सलाम करते रहे हम, हमने सोचा कि नाहक जहमत ना होती।
0: हाय हाय, एक कलर शामिल कर लें।
2: जी जी बिल्कुल करिए।
0: सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम
3: जी, मैं खाज सईद बोल रहा हूँ जी, मुल्तान से।
0: जनाब जनाब
3: सलामत रहे जी आप,
0: शुक्रिया।
3: और ये थोड़ा सा मैंने जस्तजूकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
3: जी, मैं खाज सईद बोल रहा हूँ जी, मुल्तान से।
0: जनाब जनाब
3: सलामत रहे जी आप,

0: गुनाह है तूझ।
1: अच्छा,
0: तेरे कर्म से मेरे गुनाहों पर अपना तो गिलाफ रखना।
2: वाह कमाल।
0: मौसिन है सारी कायनात का, तू रहीम भी करीम भी, इख्तियार हक है तो मेरी मौत है तू शफाफ रखना। जारी रहे जिक्र तेरी हमदो सना का, हक हो के धड़कन को ही अपना तू तवाफ रखना।
1: वाह।
0: तकवा बने मेरा तकिया और चादर हो तो ही देखी बरिया की। तकवा बने मेरा तकिया और चादर हो तो ही देखी बरिया की, रहे साया आले अबा का मुझे तो मिसरे असबाब रखना।
2: वाह कमाल। वाह।
0: ना खौफ ना रे जहन्नम, मैं तारिफ फिर दो से बरी का, ये मक्का है और बहुत मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। ना खौफ नारे जानम, ना मैं तारिफ फिर दो से बरी का, वक्त इल्तजाए सही अपनों में मेरी तो रियाप रखना।
1: वाह।
0: रियापत से रियाप निकाला है ना रे।
1: वाह वाह, निकालने के क्या कहने सर।
0: हाँ जी। और एक है वो अरफाना कलाम है, वो भी थोड़ा सा ही है अगर कहें तो, इजाजत हो तो, है सरैकी
1: सुना दियो।
0: तेरी मेरी एक मर्जी तो एक दूजे तू जुदा क्यों, तू मैं दी तकरार है तो मैं तेरे तू फिदा क्यों। मन दे मैले दी मैल दो में आबे रहमत नाल।
1: वाह।
0: मन दे मेरे लिए मैं दोवे आपे रहमत नाल, गफार भी है सत्तार भी है ता ऐब मेरे मेरी दा क्यों।
1: वाह वाह।
0: फस गई भुखा दे पावर च कश्ती मेरी बका दी,
1: क्या कहना।
0: प्रभु इन अरमान मेरे ता तू मेरा ना खुदा क्यों।
1: वाह।
0: इश्क की राह सिर उठे ते अखी तो खून उठे, फकीर करबला पहुंच गया है। इश्क की राह सिर कुटे ते अखी तो खून उठे, सिर देवन मेरा आज इश्क की ता दुखा की सदा क्यों।
1: वाह।
0: हिजर दी वाह गुलजार करे।
1: वाह
0: बात है।
1: वाह वाह।
0: हिजर की वाह गुलजार करे ते वाह बड़ बल्ले सहीद विशाल ना। गुजरान सी दिए दुखा नाल तंदरे आज गजा क्यों।
1: वाह वाह,
2: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके कलाम का,
1: बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए।
2: कमाल कमाल बोला आपने जी, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत अल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम मुश्तबा भाई एंड खुरम भाई। आई थिंक दोनों ही माशाल्लाह इस वक्त अच्छा 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से मुखातिब हैं। और क्या ही बात है भाई, आप लोगों की क्या ही बात है।
0: जुशान भाई, हम आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं।
1: वो कहता है कि मेहरबा हो कि जहां मेहरबा हो कि बुला लो जिस समत से, मेहरबा हो बुला लो जिस समत से, मैं गया वक्त नहीं के लौट के आ ना सकूं।
2: आह वाह वाह वाह वाह, तो फिर आए क्यों नहीं हो जुशान?
1: सर
0: इसके जवाब में वो कहेंगे कि वो
1: मैं
0: बुलाएं तो क्या
1: मुझे
0: तमाशा
1: मुझे
0: हो,
1: ऐसा लग
0: हम
1: रहा
0: ना
1: था
0: जाएं तो क्या
1: मुझे
0: तमाशा हो।
2: जी,
1: मुझे ऐसा लग रहा था कि मुश्तबा भाई शायद आज शो करने भी नहीं आएंगे, अदरवाइज मैं जरूर रेडियो पे हाजिरी देता।
2: अच्छा, मुझे भी लग रहा था कि मुश्तबा आज नहीं आ पाएंगे, लेकिन
1: मुझे
2: मुश्तबा ने
1: लग रहा है
2: कमाल किया
1: मुश्तबा
2: वैसे।
1: भाई, मुझे लग रहा है मुश्तबा भाई का प्लान कहीं और बन गया था।
2: हाँ, मुश्तबा भाई को
1: और
2: निहारी याद
1: जिनके
2: आएगी।
1: साथ, और मेरा ख्याल से जिनके साथ मुश्तबा भाई का प्लान बना था उनका प्रोग्राम फिर कहीं और बन गया, तो फिर इनको मजबूरन इतना आना पड़ा।
2: ये भी कह सकते हैं वैसे, और मेरे बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने तो तस्वीर भेज के
1: सर आप तो क्या ही बात है,
2: है ना, तस्वीर भेज के मैंने सबूत पेश किया था कि भाई ऐसा नहीं है।
1: आजकल बहुत देर तक आप बाहर रह रहे हैं माशाल्लाह।

0: मुहावरे बस से बिछाए।
1: ये मुश्तबा जो है ना वो इरादे रख रहा है ऐसा कि मुझे मैं ठीक ना
0: ऐसे
1: रहूं। मुश्तबा मुझे कह रहे हैं
2: घर से
1: जबरदस्ती
2: बाहर
1: बिठा
2: भेजने
1: लियो
2: के।
1: घर से बाहर
0: अच्छा,
1: निकल।
0: आप ये देखें, आप माशाल्लाह ये देखें कि कैसा दौर चल रहा है कि जो एक गैर शादीशुदा शख्स है वो वक्त से घर पे मौजूद है, और माशाल्लाह दो शादीशुदा अफराद जो हैं वो रात के 2:30 बजे जो है बाहर इस वक्त घूम रहा है।
1: बस बस निशान, ये बहुत कम अरसे के बाद ना पता चल जाएगा आपको कि भाई घर में नहीं रहना, घर से बाहर रहना। घर से
0: ऐसे
1: बाहर रहना जन्नत सा समा होगा
0: ऐसे
1: फिर।
0: ऐसे ही ऐसे ही।
1: तो
0: तो बाय द वे, आज हमारी शनिवारी मरवा दी आपने
1: हाँ ऐसे वैसे
0: थोड़ा
1: ये है कि शनिवारी हमारी रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं।
2: आज तो
1: बहुत
2: शनिवारी तिवारी नहीं जा सके।
1: हाँ, आप बहुत जल्दी आपको शनिवारी जो है वो खिलाएंगे
0: ड्यूटी
1: इंशाल्लाह।
0: ऑफिसर कौन है हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में?
1: ड्यूटी ऑफिसर इस वक्त अख्तर है, अख्तर अख्तर।
0: अख्तर लाला, अख्तर लाला, क्या बात है क्या बात है। मतलब यार वैसे मैं सीरियसली, आप लोगों ने फोन किया, मैं मिस करना शुरू हो गया आप लोगों को। यार
1: अच्छा
0: आप
1: चलो,
0: लोगों का इरादा था 2 से 4 बैठने का, मुझे बताते,
1: नहीं
0: मैं
1: मेरा
0: घर से आ जाता।
1: मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, ये इरादा है मुसम्मम मुश्तबा
0: इरादा
1: भाई का।
0: मुश्तफा, असल में मुश्तफा भाई का टैलेंट पता क्या है, इनका सबसे बड़ा टैलेंट ये है कि इरादा बहुत जल्दी बनवा लेते हैं बंदे
2: अच्छा वैसे आप इनसे पूछिए कि आपको कैसे मालूम।
1: आपको कैसे मालूम? वाह जी वाह, वाह वाह, आज तो
0: मुझे
1: मुश्तबा
0: हाँ
1: भी महंगी जा
0: हाँ
1: रहा
0: हाँ हाँ
1: है।
0: हाँ हाँ मुझे मुझे इस तरह मालूम है कि आप ये देखिए कि हम 12 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होता है और हम 11:50 पे रेडियो पहुंचने वाले लोग, लेकिन जब से मुस्तफा भाई से मुलाकात हुई है, हम जुमेरात वाले दिन भी 9 बजे स्टूडियोज पहुंच जाते हैं कि भाई मुस्तफा भाई ने आना है, हमारी मुलाकात होनी है उससे।
1: वाह वाह, देखिए जी
2: बहुत
1: मुश्तबा भाई।
0: और मैं आपको एक और भी जो है ना मोहब्बत का एक आईना वो दिखाता हूँ, या एक मंजर दिखाता हूँ, मंजर कशी करता हूँ। हुआ कुछ यूं कि मुस्तफा भाई जो है वो 3 कप चाय जो है उनके साथ थी, उनके हमरा थी, 2 कप एक शॉपर में थे और 1 कप जो है वो अलग एक शॉपर में थे।
1: अच्छा
0: तो मैंने मुस्तफा भाई से पूछा कि मुस्तफा भाई ये जो अलग शॉपर में एक ही कप है ये क्यों है? तो उन्होंने कहा जनाब ये आपका है
1: वाह,
0: क्योंकि आप चीनी नहीं पीते।
1: अरे
0: आए, आए,
1: वाह,
0: आए।
1: अरे वाह,
0: अब
1: अरे
0: आप ये इन मोहब्बतों पे कुर्बान कौन ना जाए, इरादा क्या, ये तो प्रोग्राम में आने का इरादा है, इसमें तो मर जाने का भी इरादा हो तो बना रहना चाहिए।
2: वाह। हमने सोचा कि दिशान भाई आप पहले से इतने मीठे हैं, क्या ख्याल
0: ये
2: है?
0: वैसे बड़ा खतरनाक लफ्ज है
2: कसदन कहा है हमने।
1: हाँ, क्योंकि जिशान को फिर,
0: लेकिन
1: जिशान को अगर आप, क्योंकि जिशान को फिर बचाना पड़ेगा खुद को, अगर आप इसको मीठा कह देंगे तो फिर इसको खुद
0: ऐसे ही
1: को
0: है।
1: बचाना पड़ेगा।
2: लेकिन दिशान भाई हमने साथ में जी नहीं लगाया ना।
1: मीठा जी।
0: हाँ मीठा जी, मीठा जी, तो मजे का नाम है मीठा जी, आर्य मीठा जी।
1: आज तो भाई
0: आज
1: जिशान,
0: मुश्तफा,
2: अच्छा
0: आज मुश्तफा भाई ने वो सारी सुनारी अकेले खाई है, इसलिए जाहिर है आज तेज दिन
2: अरे
0: चल रहा
2: भाई
0: है।
2: कुछ भी नहीं खाया,
0: उस
2: दिमाग
0: दिन
2: भी कहीं
0: मटन कढ़ाई
2: जाएंगे।
0: हमने चूंकि डिस्ट्रीब्यूट की थी, 3 बंदों ने खाई थी, तो हम तीनों का दिमाग थोड़ा थोड़ा चल रहा था। आज वो सुनारी चूंकि अकेली जो है वो मुश्तफा भाई के हिस्से में आई है, तो आज सारा दिमाग सिर्फ मुश्तफा का चल रहा
2: अच्छा
0: है।
2: वैसे जिशान भाई हमारे हंसने पे पाबंदी भी है,
0: ये किसने
2: हंस
0: लगाई
2: नहीं
0: है ये
2: सकते हम।
0: पाबंदी?
1: नहीं ये मुश्तबा भाई को पता होगा किसने पाबंदी लगाई।
2: वैसे
0: ये
2: हंसना नहीं चाहिए ना इतना
0: देखिएगा
2: ज्यादा।
0: बहुत जल्द बोलने पे भी लग जाएगी
1: हाँ जो
2: ख्याल करे, खुदा
0: यार
2: ख्याल
0: वैसे मजा आ रहा है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा ऐसा
1: करे।
0: है कि ऐसे सुबह आज खुर्रम भाई का प्रोग्राम था, तो मुझे ये अंदाजा था, मन गया यार हमने पिछला प्रोग्राम भी इनका जो है खराब किया,
1: नहीं नहीं बहुत
0: क्या
1: अच्छा
0: करो,
1: लगा था,
0: मामूल खराब किया।
1: बिल्कुल भी खराब
0: तो
1: नहीं।
0: ये है कि हफ्ते में या 15 दिन के बाद हम कोई प्रोग्राम डिवाइड करते हैं ताकि ये हिस्सा सबके हिस्से में आए। एक आज जो है वो प्रोग्राम खुर्रम भाई का हो, एक मुश्तबा भाई का हो, एक मेरा हो, मतलब इस तरह इसको हम कुछ करते हैं, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। और बल्कि आज मैं बताता चलूं एक अफसोसनाक खबर भी कि सजाद भाई जो हमारे बहुत
1: जी
0: सीनियर आरजे, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। तो
1: जी
0: आज मैं और आतिर भाई जनाजे पे जब गए, तो आतिर भाई रस्ते में मुझसे पूछ रहे थे कि यार वो परसों मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुन रहा था, आप लोग कंबाइंड शो बड़ा अच्छा कर रहे थे, तो आपने बताया नहीं। तो मैंने कहा सर आप सुन रहे थे तो आप ज्वाइन कर लेते, बताने वाली क्या बात थी। तो जो एक चौथा बंदा है वो भी आने को तैयार है, और खुरम आपको तो पता है कि आतिर भाई किस तरह खेलते
1: हाँ, वो फ्रंट फुट पे
0: हैं
1: खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं।
0: वो बल्कि आप आज एक वाकया भी हुआ, वो आप मुझे मिलेंगे तो फिर मैं आपको और मुश्तबा भाई को बताऊंगा, बहुत मजेदार
1: चले मुलाकात भी रखते हैं जिशान, थैंक यू सो मच
0: बड़ी,
1: और ये
0: मुश्तबा को
1: रिक्वेस्ट करके जाओगे मुझे इजाजत दे दे।
0: मुश्तबा भाई आपने बिल्कुल भी इनको नहीं छोड़ना है चार बजे से पहले।
2: हम तो कहते हैं कि बशीर बदर का
1: यार बात सुनो, खाया हुआ उन्होंने है दुम्बा, मैंने नहीं खाया हुआ।
2: अच्छा सुनिए,
1: मेरे पे रहम करो, बंदे ने दुम्बा खाया।
2: अच्छा अब मैं अर्ज करता हूँ कि वो खुद बोल रहे हैं कि आपने दुम्बा खाया और मैं भाभी के हाथ की कढ़ाई खा के आया।
0: नहीं
1: मैं इस बात से बिल्कुल बेझिझक हूँ कि मुझे नहीं सुनती वो।
0: अच्छा नहीं ये खवातीन का टैक्टिक भी होता है क्यों मुश्तबा भाई?
1: हाँ वैसे मुझे सुना उस वक्त जाता है जिस वक्त वो कहती है अच्छा अभी तक घर नहीं पहुंचे, लेट मी चेक, रेडियो लगा के सुनती है अच्छा ये कर रहा है कि नहीं कर रहा,
0: और ये वही टाइम हुआ जाता है सर।
1: हाँ तो अभी थोड़ी देर में मुझे कॉल आने वाली है, तो इसलिए मुश्तबा भाई से रिक्वेस्ट है कि मुझे इजाजत दी जाए,
0: बस इसलिए मैं शादी नहीं करता। अब आप लोगों को पता चला
1: जिशान बिल्कुल भी नहीं करनी, अब बिल्कुल भी नहीं करनी, मशवरा अजीम है
2: जिशान भाई, आप खुद इतने मीठे हैं, आपको शादी की क्या
1: जरूरत है? एक और लगा दिया आज मुश्तबा ने, मुश्तबा कह रहे हैं आप खुद सुनाता हूँ
0: मुझे समझ नहीं आई, मुझे समझ नहीं,
1: समझाता हूँ ना, मुश्तबा कह रहा है कि जिशान आप खुद इतने मीठे हो, आपको क्या जरूरत शादी करने की, मिठास आपके पास इतनी है।
0: मुश्तबा भाई इसके लिए फिर हमें यूरोप जाना पड़ेगा।
1: बहुत शुक्रिया
2: भाई, बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाए।

0: अच्छा जी, इस तमाम सुनने वाले बहुत शुक्रिया जी, सभी लोगों का जो लोग बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जो लोग सुन रहे हैं। मुज्तबा भाई आपका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, आपने सुनने वालों के साथ इस बैठक में बैठने का मौका दिया। जिशान भी आए, उन्होंने भी रंग बिखेरे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, आप इजाज़त, आप मुज्तबा को सुनिए और मुज्तबा के साथ प्रोग्राम को इंजॉय कीजिए जी। होपफुली कि मैंने आपकी समा खराशी नहीं की होगी, इंशाल्लाह ताला आपके साथ मुलाकात होगी अगले पीर को। तब तक के लिए किबी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
1: जान भाई आपका बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ मैं खुरम भाई आपका बे इंतहा शुक्रिया कि आप कुछ ही देर से ही, लेकिन आप बैठे तो सही।

तो जनाब, ये है ज़िंदगी। और वापस हम अपने प्रोग्राम के मिजाज पर लौट आने की कोशिश करते हैं। बज़्म सुखन है, गुंजाए शौक़।

0: ये मोहब्बतों का रिश्ता भी कितना हसीन रिश्ता है ना, और फिर दोस्ती का रिश्ता, क्या कहने। जनाब, हम समझते हैं कि किसी पर तनकीद करने से पहले इंसान को कुछ देर खामोश होना चाहिए। इसी का नाम जिंदगी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
1: कैसे हैं? बात कर रहा हूँ
0: जनाब।
1: साहब हैं यहाँ पे?
0: जी वो तो गए,
1: चले गए। अच्छा
0: जी,
1: वो कहते हैं ना डर तो गर्मी ज्यादा से पिघल जाते हैं, इस कदर इसकी बत्ती को ना भड़काया कर। तो ये कि हम सभी से मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना। मेरी तरफ से तो प्रोग्राम आपने पूरे समाज को लेकर आ जाए, हमें क्या इतराज, ठीक है। आप उसके मुझाते हैं, हमें चेहरे अच्छे लगते हैं, बुरे नहीं लगते। मैंने इस एंगल में बात नहीं की थी, मैंने तो ये कहा था कि प्रोग्राम अकेला आरजे करता है तो उसकी वैल्यू बहुत होती है उस प्रोग्राम में, अच्छी बात। तो मुझे आप जब पहले दिन प्रोग्राम करने आए थे, मैंने कॉल की थी आपको, ज्वाइन दी थी। इंशाल्लाह आपका लहजा अच्छा है, आप अच्छा प्रोग्राम करेंगे।
0: जनाब बहुत शुक्रिया,
1: मुझे अच्छा लगेगा।
0: आप यकीन जानिए, मैं गुज़श्ता 15 बरस से प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरा और रेडियो का जो रिश्ता है वो गुज़श्ता 15 बरस का है, और हमने सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि जो सुनने वाला है वो हमारा दोस्त भी है, हमारा भाई भी है ना।
1: सुनने वाले ने पता है कि सुनने वाले ये नहीं कि मैं सुन रहा हूँ, मैं तो तर्जमानी कर रहा हूँ, जो सुनते हैं ना लोग उन्हें सभी अच्छे लगते हैं, हंसना खेल रहा किसी को अच्छा नहीं लगता
0: जी।
1: इतनी बात का मैंने खुरम से जवाब लेना था कि हम तो रहते ही, मैं एक फार्मा में काम करता हूँ,
0: सही
1: से कम इधर लड़कियां भी बहुत सारी हैं, लड़के भी हैं, हम यंग मैन जो उनके साथ इतने दिन सारा गुजारते हैं।
0: सही,
1: हमारा तो शोभा ही ऐसा है कि सारा दिन डॉक्टर साहब भी होते हैं।
0: जी हाँ, तो कभी कभार इंसान को गुस्सा ही जाता है, जाहिर है। जी हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा फरमाया।
1: जिसमें मैं मेरे रोजी रोटी चलती है
0: जनाब,
1: तो ऐसी बात नहीं कि हमें बुरा लगता है ऐसा खेलना।
0: चले जनाब, अब आप तशरीफ लाए हैं तो आप क्या सुनाना चाहेंगे प्रोग्राम में? गजल सुनाना चाहेंगे, नज्म सुनाना चाहेंगे? खरी खरी तो आप सुना चुके।
1: वो मेरा तो टॉपिक बना दिया इतना, मैं उसको टेंशन लग गई मेरी बात की, कहता है कि वो उसमें बर्दाश्त नहीं। यार मैं खुरम से कहता हूँ कि आप जो मर्जी कहना चाहते हैं और कहें मुझे, मैं बर्दाश्त के लिए तैयार हूँ।
0: आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं, और आप हैं तो हम हैं, है ना।
1: बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, बहुत शुक्रिया। तो मैं अहमद फराज साहब को सुनाऊंगा थोड़ा सा। वो जब मैं किसी और की, कुछ लोग हैं उजड़े दिल वाले,
0: अच्छा
1: लोग हैं उजड़े दिल वाले जिन्हें मोहब्बत देनी है, फूल हैं जिनको चुनना है और हार की सूरत देनी है, कुछ अपनी नींदें बाकी हैं जिन्हें बांटना है कुछ लोगों ने, उनको भी चुराहत देनी है। ऐ उम्र रवां आहिस्ता चल, आहिस्ता चल, अभी खासा कर चुकाना है।
0: वाह,
1: ठीक है,
0: वाह, बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। तो जनाब, सिलसिला एक गुफ्तगू चल रहा है, और उन्वान ही तो नहीं है, इसलिए कि मोहब्बतों का भी भला कोई उन्वान हुआ करता है।

छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। वो बातें ही तो हैं। उनको बातें समझकर भुला दिया कीजिए। लोग उनको भी दुआएं देते हैं जो बेवफा होते हैं। फैज ने कहा था ना, खुदा वो वक्त न लाए कि सोगवार हो तू। खुदा वो वक्त न लाए कि सोगवार हो तू, सुकून की नींद तुझे भी हराम हो जाए। तेरी मुसर्रत पहम तमाम हो जाए, तेरी हयात तुझे तलख जाम हो जाए। गमों से आईनाए दिल गुदाज हो तेरा,

वफूरे दर्द से सीमाब होके रह जाए। हुजूम में यास से बेताब होके रह जाए। तेरा शबाब फकत ख्वाब होके रह जाए। गुरूर हुसन सरापा नियाज हो तेरा। तवील रातों में तू भी करार को तरसे। तेरी निगाह किसी गम गुसार को तरसे। खजान रसीदा तमन्ना बहार को तरसे। कोई जबी न तेरे संग आस्तां पे झुके। कि जिनसे इज्जो अकीदत से तुझको शाद करे। फरेबे वादाए फरदा पे एतमाद करे। खुदा वो वक्त ना लाए कि तुझको याद आए। खुदा वो वक्त ना लाए कि तुझको याद आए। वो दिल कि तेरे लिए बेकरार अब भी है। वो आंख जिसको तेरा इंतज़ार अब भी है।

0: जी जनाब, शब इंतज़ार, और कहते हैं कि इंतज़ार बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, इंसान का हो, फिर तो सहा ही नहीं जाता। तो जनाब, हम आपसे इंतज़ार नहीं करवाते, शामिल करते हैं प्रोग्राम में अगले कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, कैसे हैं मुस्तफा?
0: बिल्कुल ठीक हूँ।
1: नहीं मुर्तजा, नहीं मुस्तफा।
0: अच्छा, आपको मेरा नाम भी नहीं आता। हाय हाय,
1: देखिए ना, नहीं आता, कैसी बात है।
0: आप ऐसा कीजिए,
1: एक्चुअली तीनों खसूसियात शामिल कर लें आप।
0: अनिला बात कर रही है ना आप?
1: ओह,
0: देखिए हमने आपको आवाज से पहचान लिया है।
1: क्या बात,
0: आप ऐसा कीजिए कि आप रिहर्सल कीजिए मेरे नाम लेने की, उसके बाद कॉल कीजिएगा और मुझे ठीक से बताइएगा कि मेरा नाम क्या है।
1: मुस्तफा हैदर।
0: हाँ, वो जॉन ने कहा था ना कि तुम
1: को सुनने में थोड़ी सी वो कंफ्यूज हो गई कि बेचारी। वैसे उसने कई दफा आपका नाम मुस्तफा के अलावा मुस्तबा भी बोला, वो खुरम वैसे उसको जरा सता रहे थे ना। वो जरा रौनक सी लगी हुई थी, शुगल हो रहा था, अच्छा लग रहा था और बहुत एंजॉय कर रहे थे, सब सुन रहे थे, अच्छा लग रहा था। प्रोग्राम एक तरह थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था ना, क्योंकि उस टाइम पे इतनी संजीदगी होती है, लोग अपने बेडरूम्स में आराम कर रहे होते हैं और सुकून से लेट के प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, तो जो शायरी का एक जेन बना होता है ना, तो उनको लग रहा होता है कि भी बस शायरी होनी है और हमने एक संजीदा सा शो सुनना है, लेकिन उससे हटके जरा वो मजा आ गया, जरा अच्छा लगा, रौनक सी हो गई और शुगल और उदास दिल भी मेरा ख्याल है लहक उठे होंगे।
0: देखिए बाज़कत ऐसा भी होता है ना कि कहीं कहीं झगड़ा भी चल रहा होता, तो क्या हाँ। खबर उन्होंने जब प्रोग्राम सुना हो तो बहुत खुश हुए हो, है ना?
1: हाँ, नहीं खुशी होती है, आप इतनी मजे की आप लगे हुए थे, शरारते हैं, बातें कर रहे और जोक हो रहे थे मजे के। मैं बल्कि ना जाके ना लाउंज में सुन रही थी, मैं बेडरूम से बाहर चली गई थी, मुझे हंसी आ रही थी, तो मैंने कहा ये ना हो कि
0: लोग कहीं पागल वागल
1: मेरे
0: तो अनिल आप कहेंगी कि जो मुझे रेडियो पे कहा जाता है अब वो घर में भी कहा जाता है, नहीं
1: मतलब मुझे।
0: बहरहाल आप ने प्रोग्राम की तारीफ की, आपका बहुत शुक्रिया।
1: मुझे ना मुसीबत थोड़ी सी बात ये करनी है कि नजीर भाई और जो क्यानी भाई और डार साहब और क्यानी साहब जो है ना, एक्चुअली हमारे बड़े मोहतरम, बड़े बेहतरीन कॉलर हैं, बड़े अच्छे सीनियर कॉलर हैं, और वो एक्चुअली जरा उनकी एक रूटीन वैसे है ना कि आपको प्रोग्राम को वो सुनते उस तरह से और उसमें वो एंजॉय करते हैं, तो लेकिन हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है, तो इस वजह से ये नहीं कि उनको आपका हंसना खेलना अच्छा नहीं लग रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, लेकिन वो जेन एक बना होता है ना जी कि इस वक्त ये प्रोग्राम चलना है तो हमने वो सुनना है, तो अदरवाइज बड़े अच्छे वो कॉलर है हमारे मोहतरम है, और कुछ बुजुर्ग हमारे या इस एज के जो कई कॉलर है ना, वो इस वक्त भी रात के इस वक्त भी शुगल मिलने पर बड़ा खुश हो रहे होते हैं
0: जी,
1: वो एंजॉय करते हैं।
0: असल में जो ऊंचा शौक का मिजाज
1: और क्या चाहिए,
0: इनम जो ऊंचा शौक का मिजाज है ना वो बहुत अलग है, तो बहरहाल वो अगर हमें पसंद करते हैं, इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। क्या सुनाना चाहेंगे आप?
1: आपने कहा इरम, इरम बड़ी अच्छी कॉलर है हमारी, इसके लिए बहुत सी दुआएं, वो जब भी आती इस्लाम दुआ कहती है, इरम थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी कॉलर है।
0: अरे अरे, आप
1: भूल गए।
0: अरे मैं जी अनिला,
1: कोई बात नहीं, कुछ बताना चाहूंगी, इजाजत हो?
0: जी जी इशात।
1: तो शायरी का प्रोग्राम है तो फिर शायरी के फूल तो होने चाहिए ना। खामोश,
0: आपकी बातें भी अनिला फूलों से कम नहीं है।
1: थैंक यू सो मच,
0: आप जीती रहे।
1: खामोश नजर कोई बात तो कर, खामोश नजर कोई बात तो कर, दिल दुखता है तू मेरे दिल पे हाथ तो रख, तू मेरे दिल पे हाथ तो रख, मैं तेरे हाथ पे दिल रख दूं।
0: हाय हाय, वाह,
1: मैं तेरे हाथ पे दिल रख दूं, दिल दर्द भरा, जो इसको छुए ये उसको मिले। दिल दर्द भरा जो इसको छुए ये उसको मिले, एक लफ्ज मोहब्बत बोल जरा, मैं सारे लफ्ज तुझे दे दूं।
0: वाह,
1: दिल आप से राब, दिल आप से राब से तो मुझे लाइन भूल गई। दिल दर्द को आप से राब कर, तू मेरे ख्वाब पे आंख तो धर। मैं तेरी आंख में ख्वाब भरूं।
0: वाह,
1: खामोश मोहब्बत बात तो कर, खामोश मोहब्बत बात तो कर।
0: वाह, बहुत शुक्रिया।
1: और हमारे जी जी,
0: आप प्रोग्राम में तशरीफ लाई, आपका बहुत शुक्रिया।
1: मैं थोड़ा सा कुछ और सुनाना चाहूंगी, मुस्तफा अगर इजाजत हो तो।
0: सुनाइए।
1: हमारे बड़े अच्छे शायर आते हैं, कॉलर आते हैं, हमीद गुलसा, उनकी थोड़ी सी शायरी मैं सुनाना चाहूंगी।
0: इरशाद।
1: फूल सहराओं में खिले होंगे।
0: वाह,
1: फूल सहराओं में खिले होंगे, चाक दामन के भी सिले होंगे। इतने चेहरे तो मुझको याद नहीं, आप कहते हैं तो मिले होंगे।
0: वाह,
1: इसका ना एक बार उन्होंने कहा था कि कोई ना, शुक्रिया, कि मेरी शायरी की धुन बनाए कोई, तो मैंने ना उनकी बहुत सारी इसी तरह शायरियों की ना मैंने उनकी धुने बनाई। इसकी भी मैंने बनाई थी, लेकिन अब टाइम कम है क्योंकि और लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह आपको।
0: अनिला, वो आपने राग खामोशी में बनाई थी क्या? तो सुना दीजिए।
1: हाँ, खामोशी
0: सुनाइए।
1: चलिए ट्राई करती हूँ।

0: ही नहीं होंगे, चाकदा मन के भी सुने होंगे। सॉरी मेरा गला खराब है। चाकदा मन के भी सुने होंगे, इतने चेहरे तो मुझको याद नहीं, इतने चेहरे तो मुझको याद नहीं। आप कहते हैं तो मिले होंगे, आप कहते हैं तो मिले होंगे। फूल सहराओं में खिले होंगे। जी मुश्तबा,
1: बहुत उम्दा, बहुत उम्दा।
0: अब हम आपकी तरह तो नहीं गा सकते।
1: हम जो बात करते हैं उसको आप गाना कहते हैं?
0: नहीं, आपने उस दिन जो
1: वो उस प्रोग्राम की बात थी, उस दिन की बात थी। ये प्रोग्राम ऊंचा शौक है, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका शुक्रिया।
0: थैंक यू। नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो भी गुनगुनाने वाला ही हो जाता है जब आप बड़े अच्छे से खूबसूरत से सुरीली अंदाज में बोल रहे होते हैं। तो
1: जी बहुत शुक्रिया,
0: अच्छा लगता है। और सबके लिए बहुत सी दुआएं आने वालों के लिए, और जो जो सुन रहे हैं उन सबके लिए मैं दुआ गो हूँ। अल्लाह सबको सलामत रखे, और आपको भी। अच्छा प्रोग्राम है, शुक्रिया। इसी तरह का खूबसूरत प्रोग्राम आप लेके आते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू
1: जी, बहुत शुक्रिया।

0: को बना रहा है।
1: सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
0: वही खुदा
1: क्या कहने,
0: थे।
1: माशाल्लाह।

0: ये एक जो शेर है ये आपके लिए खुसूसी इस्तफादा कर रहा हूँ जनाब सुहेल शाह साहब के अशार से।
1: बिस्मिल्लाह।
0: वो जात अपन में है के

0: जो 14 जलवों में
1: हाय हाय
0: अपना जलवा
1: वाह वाह
0: दिखा
1: वाह
0: रहा,
1: वाह वाह क्या कहने,
0: वही खुदा
1: हाय हाय सुभान अल्लाह।
0: जो 14 जलवों में अपना जलवा दिखा रहा वही खुदा है। ये बतौर खास शेर है कि शरीयतों के उसूल देख

0: हुसैन का मर्तबा जहां को बता रहा
1: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
0: वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। आखिरी शेर पेश करो। हुसैन सा कौन है तवंग नमाज करती हो नाज जिस पे वो जिसकी खातिर हुसैन सर को कटा रहा
1: अल्लाह अकबर
0: वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। जनाब
1: माशाल्लाह क्या कहने,
0: बस ये
1: खुदा
0: छोटी सी
1: आपको इसका
0: काविश है।
1: अज़र अता करे। बहुत
0: इलाही
1: अल्लाह
0: आमीन। ये आपके
1: बहुत
0: तवसल
1: अल्लाह
0: से जो है गुंजा सुखन में ये मौका मिला कि हम यहाँ पर शामिल हुए और अपनी छोटी सी हाजिरी और काविश जो है वो अल्लाह की बारगाह में, मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में जो है वो पेश की है आपके तवसल के साथ।
1: बहुत अल्लाह, खुदा आपको इसका अज़र अता करे।
0: जी बिस्मिल्लाह।
1: प्रोग्राम में शामिल हुए आपका बे इंतहा शुक्रिया। आप प्रोग्राम में शामिल हुए,
0: आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको इसी तरह ये सिलसिला जारी और सारी रखे। एक वक्त हुआ करता था कि एफएम को बड़े जोरों शोर से सुना जाता था और आपके प्रोग्राम को सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अभी भी वो पोटेंशियल कायम और दायम है और सुनने वाले जो हैं वो सुनते हैं और इसी तरह जो है वो ये सिलसिला जारी और सारी रहे।
1: जी बहुत शुक्रिया, आबाद रहिए।
0: जी
1: बहुत शुक्रिया,
0: जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया,
1: जज़ाकअल्लाह, खुदा हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़।

0: हुसैन की शान जो जहां को दिखा रहा है वही खुदा है। हाय हाय। इफ्तिखार आरिफ कहते हैं कि शरफ के शहर में हर बामोदर हुसैन का है, जमाने भर के घरानों में घर हुसैन का है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जनाब कौन है हमारे साथ, कहां से?
1: मुश्तबा भाई, जिला मुल्तान, तहसील शुजाबाद से, हाफिज अब्दुल रहमान।
0: जनाब
1: हमेशा की तरह आवाज सुनने को मिल रही है, अल्लाह करे यही आवाज सदा सलामत रहे। अगर ये खुरम भाई या जीशान नासिर आपके साथ कंबाइंड शो चले तो मजा दोबारा हो जाएगा। आपकी शायरी, आपका तलफ़ुज़, आपका चुनाव अच्छा लगा। खुरम भाई हो या आप हो या जीशान नासिर साहब हो, मैं कहता हूँ माइक पे वो आदमी बैठता है जो तालीम हासिल करके डबल एम ए करके बैठता है, कोई आम बंदा नहीं बैठ सकता।
0: जनाब नवाजिश।
1: मैं कुछ थोड़ा सा सुनाना भी चाहता हूँ शायरी के अंदर। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
0: हाय हाय वाह।
1: हर बंदा ऐसे नहीं बोल सकता जैसे कि आप बोल रहे हैं यहाँ। आरजे हर बंदे बोलता है, लेकिन आप जैसे जो तीन बंदे यहाँ आके बैठते हैं बोलते हैं, मैं कहता हूँ एक एक लफ्ज भी चुनाव होती है।
0: जी बहुत शुक्रिया। आज मुझे यकीन हो गया कि जो मुल्तानी हलवा है वो बहुत मीठा होता है। सर बहुत शुक्रिया। कोई गजल सुनाना चाहेंगे आप?
1: नहीं सर, मैं ये नहीं सुना सकता। अब मैं ये कह सकता हूँ, दो अब मेरे बहने आई थी, मिशाल साहिबा और नीरा साहिबा आई है, उन्होंने शायरी सुनाई, बहुत अच्छा लगा। और हमीद गुल आते हैं, वो भी अच्छी है, नजीर।
0: आज वो आए नहीं अभी तक, हमीद गुल साहब का हम इंतजार कर रहे हैं।
1: अवान साहब है, सबको मेरी तरफ से आज जाना मोहब्बत भरा सलाम भी कबूल करे, लेकिन आप सुना दे वो बेहतर रहेगा।
0: जनाब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ, कहां से?
2: बेबी बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया से।
0: जनाब ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हैं बेबी। बेबी कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं?
0: बस बुखार तो है, लेकिन चलिए प्रोग्राम में आकर काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ।
2: बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम और बहुत अच्छी गुफ्तगू की।
0: शुक्रिया। आज क्या बात करना चाहेंगी?
2: एक गजल सुनाना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो।
0: अरे ये प्रोग्राम आप ही का है, आप इरशाद कीजिए।
2: जी बिल्कुल, हमारे बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि अगर हमारी चीज हो उसको भी इजाजत लेके इस्तेमाल करें तो मुझे अच्छा लगता है कभी कभी।
0: जी बहुत शुक्रिया।
2: वैसे हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था, पर उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था।
0: वाह।
2: दो फूल दो बोल भी मीठे नहीं थे हमको मैसर, यानी हमें तिनके का सहारा भी नहीं था।
0: वाह।
2: उस शख्स ने जिंदा भी नहीं छोड़ा था मुझको, हालांकि मुझे जान से मारा भी नहीं था।
0: वाह।
2: इस्माइल राज साहब की गजल है, उनका जो कलाम है वो बाकायदा अदबी रिकॉर्ड में मौजूद है।
0: अच्छा।
2: और एक गजल का एक मतला सुनाना चाहूंगी। गमे हिजरा में کیا کیا نہیں کرتی، غم ہجرا میں کیا کیا نہیں کرتی، سانسے برف ہو جائے تو پگھلا نہیں کرتی.
0: واہ
2: بہت بہت شکریہ، خیال رکھے گا تمام لسنر کو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. آنکھوں کو آنسوؤں میں ڈبونے کا شوق ہے، بس ایک بار پھر اسے کھونے کا شوق ہے. السلام علیکم.
3: جی وعلیکم السلام. مصطفی بھائی ماشاءاللہ، میں عبدالحمید فروخ آباد گاؤں میرا ہر چند
0: جناب.
3: ماشاءاللہ بہت آواز بڑی پیار، ویسے نہ اتنا پیارا مصطفی، کیا بات.
0: بہت شکریہ.
3: مصطفی بھائی اسی تو سن لے آئی ہے صاحب، ایک آیا سی انہیں حمد بھی پڑھی، منقبت بھی پڑھی، ماشاء اللہ بہت ساری دعاواں تھے واسطے، شاعری شوری سانو تو نہیں آتی، اہم سننا رہے ہاں
0: جناب. تو سی کچھ چھڑاؤ تینوں بھی اسی سننا چاہتے ہاں. تاڈی اے
3: میں جے کہویں تے ایک شعر اسلام دا پڑھ دینا، کیونکہ آخری ٹائم آ.
0: اللہ تعالیٰ تنو صحت اور تندرستی دے، کیوں خیریت تے کی ہو گیا تنو؟
3: میں
0: ازراہ تفنن عرض کرا تھا. ارشاد

0: भी जो ना निभाएं साहब, ऐसे अपनों से प्यारों से जान छुड़ाई जाए। सामिन, ये थे हमारे साथ मेहताब साहब, और बढ़ते हैं प्रोग्राम के आखिरी कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से?
1: मैं जी सईद ख्वाजा बोल रहा हूँ, दूसरी दफा कोशिश की है मैंने।
0: या अल्लाह खैर, तुसी दूजी दफा किया थे, मैं डर गया, दूजा जन्म ले लिया मैं। सर बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल हुए। ये स्टूडियो बिल्कुल
1: उस वक्त मैंने वो सुनी है और उसकी अपना हम्द।
0: अच्छा।
1: बच्चे की, तो मैंने कहा चलो मैं भी फिर कुछ और सुना दूं।
0: अच्छा जनाब, प्रोग्राम अपने इख्तिताम मराहिल में दाखिल हो चुका है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अगले प्रोग्राम में इसको ना अगले प्रोग्राम पर उठा रखते हैं, वादा।
1: चलो ठीक है ठीक है। अच्छा कब आपके दिन कब होता
0: शबे,
1: है?
0: शबे जुमा, शबे हफ्ता।
1: अच्छा,
0: जब जुमेरात पलट के जुमा बनती है और जुमा पलट कर हफ्ता बनता है, यानी आज की शब और गुज़श्ता शब, ये दो दिन प्रोग्राम हुआ करता है।
1: ठीक है, मुझे आगे समझ गए, इतना तो मैं समझदार हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: अच्छा, थोड़ा सा है, एक आधा मिनट तो मिल जाएगा।
0: अब जाहिर है
1: हाँ, वो मैंने बात करनी है, शायद तो अगले दिन के लिए उठा रखी, अगले प्रोग्राम में करेंगे।
0: चलिए बात कर ले।
1: वो ये है कि मैं अपना शायर अहल बैत भी हूँ।
0: माशाल्लाह। अच्छा, आपने कभी 4 बजे के वक्त रात के किसी पहर किसी से फोन पर बात की हो और फिर मिनट समाजत की हो? अरे 30 सेकेंड बात करने दो मुझे। जी
1: बस मैंने कहा नहीं, बस यही कहना था कि मैं अहले बैत का शायर भी
0: हूं। हाय हाय, फिर सुनाइए जनाब, जब आपने शायर है अहले बैत की बात कर दी तो अब मैं कौन हूँ आपको रोकने वाला?
1: अच्छा ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: इशाद, इशाद।
1: और जमन में जो भी मौला अली का गुलाम हो जाए, जमन में जो भी मौला अली का गुलाम हो जाए, खुल्दे बरी में उसका मुस्तकिल क़याम हो जाए।
0: हाय हाय, हाय हाय।
1: अश्क बरसे, अश्क बरसे जिन आंखों से गमे हुसैन में, उन पाक आंसुओं के बदले कौसर जाम हो जाए।
0: सुभान अल्लाह, क्या कहने।
1: दश्ते करबला के हर सितम पर पबंदी हाँसों की, सद अफसोस गमे अहल बैत में कुफर गुलाम हो जाए।
0: वाह वाह वाह, क्या कहने।
1: बस जी यही सुनाना था मैंने, कहा चलो वो भैया सुना गया तो थोड़ा सा मैं भी अहल बैत की नौकरी कर लूं।
0: जनाब कोई और कलाम है अहल बैत की शान में तो आप सुना सकते हैं?
1: चलो फिर, डायरी अब दूर पड़ी है, मैं ये तो मुझे याद थे
0: हुण, ऐ नहीं कह देना कि डायरी गड्डी च पई है तो मैं गड्डी च लाए के फिर वो
1: नहीं, नहीं गड्डी नहीं जी, वो अंदर कमरे च पई है थे, बच्चे सुते हुए थे, नहीं तो कोई ऐसी गल नहीं, मैं तो रेडियो च बैठा था अपना, रात तो थोड़े प्रोग्राम ही सुनता रहना, मैं वो जी शान नासिर साहब है या आप है।
0: सर बहुत शुक्रिया।
1: या ओके भी, हाँ जी बस आपसे ही हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ सुना देते हैं गम दास्तां।
0: बहुत शुक्रिया
1: जी, मेहरबानी जनाब, शुक्रिया, ओके अल्लाह हाफिज
0: जी। आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया,
1: बड़ी मेहरबानी।

0: कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार ही की इबादत करता हूँ और किसी को उसका शरीक नहीं बनाता।
1: قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
0: ये भी कह दो कि मैं तुम्हारे हक में नुकसान और नफे का कुछ इख्तियार नहीं रखता।